0: राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समारोह

0: समझौते को जल्दी से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समाज

श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा और वक्त है कान्हा की मधुर मुरली के सुरों में खो जाने का। कृष्ण का नाम आते ही मन प्रेम और भक्ति से भर उठता है। उसकी मुस्कान, उसकी मुरली और उनकी बातें हर दिल को अपना बना लेती हैं।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा और वक्त है कान्हा की मधुर मुरली के सुरों में खो जाने का। कृष्ण का नाम आते ही मन प्रेम और भक्ति से भर उठता है। उसकी मुस्कान, उसकी मुरली और उनकी बातें हर दिल को अपना बना लेती हैं।

कमल सिंह राजपूत और साथियों के गाये इस लोकगीत के साथ ही आज का लोक रंजनी कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। 7 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी।

कमल सिंह राजपूत और साथियों के गाये इस लोकगीत के साथ ही आज का लोक रंजनी कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। 7 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 9 बजे से, और 9:30 पर होगा कार्यक्रम एक फनकार, जिसमें आज बात होगी बॉबी देओल पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम गुना होगा रोज की तरह 10:05 से। प्रस्तुत करता होंगे राजकुमार कौशल। 11 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से शाम 5 बजे। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 6 बजे। इसमें आज की बात होगी बदलते मौसम में करें स्वास्थ्य की उचित देखभाल। अपना कैरियर स्वयं चुने के अंतर्गत आज बात होगी बैंकिंग पर उत्कृष्ट सेवाओं की डगर पर पहला कदम। शाम 6:30 से आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रम। 7:21 पर भोपाल से ही ग्राम सभा कार्यक्रम होगा और 8 बजे सुर्खियों में कार्यक्रम भी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में गर्मी के बीच पेयजल संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी संबंधित विभागों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से बंद कर दी हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने और रोज पानी की उपलब्धता की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खनन के लिए 1500 करोड़ और पंचायतों को 55 करोड़ रूपये अलग से जारी किए हैं। इस बार अच्छी खबर में बात नीमच के किसानों की। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना का जमीनी असर क्या है, बता रहे हैं हमारे नीमच संवाददाता दिनेश प्रजापति।
2: नीमच जिले में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना किसानों के लिए नई रोशनी लेकर आई है। खेतों में लगाए जा रहे सोलर पंप अब किसानों की सिंचाई व्यवस्था को आसान बना रहे हैं। जिले में सैकड़ों किसान इस योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन चुके हैं।
3: राजेंद्र गोयल कार्यपालन मंत्री उज्जैन ने बताया कि
4: भारत सरकार द्वारा इसमें 30% का अनुदान दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा 60% का अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान कृषक ऋण के रूप में दिया जा रहा है। इस प्रकार किसान को 90% के अनुदान में सोलर पंप की योजना का लाभ मिल रहा है। किसान को मात्र 10% की राशि ही इस योजना के तहत देना होता है।
2: सोलर ऊर्जा से लाभान्वित किसान गोविंद पाटीदार का कहना है,
5: किसी भी मौसम में कोई समस्या नहीं, बारिश हो, धूप हो, छांव हो, हर समय सोलर अपने को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाता है। फसलों को

0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में गर्मी के बीच पेयजल संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी संबंधित विभागों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से बंद कर दी हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने और रोज पानी की उपलब्धता की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खनन के लिए 1500 करोड़ और पंचायतों को 55 करोड़ रूपये अलग से जारी किए हैं। इस बार अच्छी खबर में बात नीमच के किसानों की। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना का जमीनी असर क्या है, बता रहे हैं हमारे नीमच संवाददाता दिनेश प्रजापति।
2: नीमच जिले में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना किसानों के लिए नई रोशनी लेकर आई है। खेतों में लगाए जा रहे सोलर पंप अब किसानों की सिंचाई व्यवस्था को आसान बना रहे हैं। जिले में सैकड़ों किसान इस योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन चुके हैं।
3: राजेंद्र गोयल कार्यपालन मंत्री उज्जैन ने बताया कि
4: भारत सरकार द्वारा इसमें 30% का अनुदान दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा 60% का अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान कृषक ऋण

सकते हैं, जिसको स्वगणना नाम दिया गया था। इसको करने से आप स्वयं अपने आंकड़े विधिवत उस पर भरते थे, और जब आपके यहाँ प्रगणक आते थे तो आप सिर्फ उनको अपनी स्वगणना की आईडी जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलती थी वो दे देते थे, तो इससे आपका वेरिफिकेशन हो जाता था। तो यह एक नई तकनीक थी। जैसा कि अभी बताया कि प्रगणक जो घर घर आपके यहाँ आते हैं वो प्रगणक यानी एन्यूमरेटर्स कहलाते हैं, और इनको विधिवत ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। फिर इनके ऊपर सुपरवाइजर्स होते हैं जो इनके किए गए काम की मॉनिटरिंग करते हैं कि जितना ब्लॉक इनको हाउसिंग ब्लॉक दिए गए थे उसमें इन्होंने कितने घर किए, कोई घर छूटा तो नहीं, कोई सदस्य छूटे तो नहीं। कई बार देखा गया कि लोग जानकारी साझा करने में हिचकिचाते हैं, उन सभी के लिए विधिवत मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश दिए गए कि यह जानकारी आपके उपयोगी है, गोपनीय भी है, इसलिए इसको साझा करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इन जनगणना के आंकड़ों से ही आखिरकार हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अनेक कल्याणकारी योजनाओं में डाटा कलेक्शन और नीति बनाने में सहायता मिलती है। जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारे विद्यार्थी हैं,

नहीं हैं, जिसको स्वगणना नाम दिया गया था। इसको करने से आप स्वयं अपने आंकड़े विधिवत उस पर भरते थे, और जब आपके यहाँ प्रगणक आते थे तो आप सिर्फ उनको अपनी स्वगणना की आईडी जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलती थी वो दे देते थे, तो इससे आपका वेरिफिकेशन हो जाता था। तो यह एक नई तकनीक थी। जैसा कि अभी बताया कि प्रगणक जो घर घर आपके यहाँ आते हैं वो प्रगणक यानी एन्यूमरेटर्स कहलाते हैं, और इनको विधिवत ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। फिर इनके ऊपर सुपरवाइजर्स होते हैं जो इनके किए गए काम की मॉनिटरिंग करते हैं कि जितना ब्लॉक इनको हाउसिंग ब्लॉक दिए गए थे उसमें इन्होंने कितने घर किए, कोई घर छूटा तो नहीं, कोई सदस्य छूटे तो नहीं। कई बार देखा गया कि लोग जानकारी साझा करने में हिचकिचाते हैं, उन सभी के लिए विधिवत मीडिया

0: लगता नहीं, रेडियो बज रहा है, गाने सुन रहे हैं और भरी दोपहरी में अपने वो मड़ाई चल रही है। मैंने देखा है कि पशु चराते हुए बहुत सारे लोग
1: आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे श्रोताओं के

0: मेरा नाम मेघ सिंह नरवरिया है, मैं जल संसाधन विभाग से अनुभागीय अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं अभी वर्तमान में गुना में निवास करना हूँ। आकाशवाणी को इस वर्ष 90 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, उस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आकाशवाणी एक ऐसा वृक्ष रहा है। आज वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारी शाखाएं उसकी एक रूप ले चुकी हैं, लेकिन आकाशवाणी ने जो अपना एक स्थायित्व कायम रखा है वो लगातार अभी अनवरत चालू है, और आकाशवाणी की एक अलग ही महत्ता है। मेरा जन्म वर्ष 1963 में हुआ है, और मैं उसके पश्चात जब मैं 7-8 वर्ष का हुआ था, जब से मैं आकाशवाणी को लगातार सुनता आ रहा हूँ। और आकाशवाणी ही एक ऐसा माध्यम है श्रोताओं के लिए जो एक निष्पक्षता और एक सटीक विश्लेषण जो खबरों के साथ में प्रस्तुत किया जाता है, आज भी उसकी सार्थकता बराबर बनी हुई है। आज भी ये बहुत अच्छे संदेश, बहुत अच्छा मनोरंजन का माध्यम है। आज वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो हम जब अपनी निजी कारों में, गाड़ियों में यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आकाशवाणी को सुनना ही पसंद करते हैं, उसके माध्यम से गीतों को सुनना पसंद करते हैं, और उसके माध्यम से ही समाचारों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें जो समाचार जो प्रसारित किए जाते हैं उनकी सटीकता 100% सही रहती है, सत्यता पे आधारित रहते हैं। और बहुत सारे लोग इसको, मैंने देखा है कि आकाशवाणी के ये माध्यम से समाचारों को, मनोरंजन को आज भी बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं।
1: अच्छा, आपसे एक बात और जान

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित

0: बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए

0: रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्धविराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमरीकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स

0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: Delhi's shopping problem just became a business. Well, the Pioneer reports that Carrymen, which began operations in Lajpat Nagar in April, offers shoppers a trained assistant who accompanies them through the market, carries their bags, holds their spot in queues, helps them navigate stores. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from mandate of Uniform Civil Code. Petrol price hike by 2 rupees 61 paise per litre, while that of diesel by 2 rupees 71 paise per litre. National Testing Agency postponed CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: FMN पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र 102.3 मेगाहर्ट्ज पर सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। अब प्रस्तुत है श्रोताओं के फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत। अनुरोध गीत कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में, साजन फिल्म का। समीर ने इसे लिखा है, नदीम श्रवण ने संगीत दिया है और इस गीत की हमें फरमाइश भेजी है प्रमीला गंजालोर जिला रतलाम से, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश, ऋषि वर्मा ने। एक और पत्र है इसी गीत के लिए, रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से, खुशी खुर्ची, ब्रूनो, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, ललिता, स्वाति और मालती चौधरी का। आइए सुनते हैं सबकी पसंद पर साजन फिल्म का ये गाना।

मरते दम तक फिल्म का गाना सुनिए अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं कोली मोहल्ला छबड़ा से नूर बानो, सलमा बानो और रुखसार, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, बीबी आरजू और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने पत्र भेजा है। कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है।

कार्यक्रम का ये अगला पत्र हमें आया है राजाबत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजाबत राज मधु राजाबत राशि रक्षित चितरंजन कमलेश उमेश सरोज आरती रेखा रितिका रिचा स्वीटी सागर रिया रीत ऋषभ राजाबत और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने पत्र भेजा है। इन सबकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं प्रेम कहानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने इसे गाया है, आनंद बख्शी ने लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है।

श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों का आज का ये अंक अब समाप्ति की ओर है। आशा है आपकी पसंद के गीतों ने आपके मन को अवश्य स्पर्श किया होगा और इस संगीतमय प्रस्तुति के साथ बिताए गए ये पल आपको सुखद अनुभूति दे गए होंगे। आपके स्नेह पत्रों और संदेशों के लिए हम हृदय से आभारी हैं। इसी आत्मीयता और आत्मार्थ के साथ आगे भी जुड़े रहिएगा। अब अपने रेडियो दोस्त रेखा श्रीवास्तव को दे आज्ञा, अगले कार्यक्रम में फिर भेंट होगी कुछ नई फरमाइशों और कुछ नए गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पर चलते चलते नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र गुना मध्य प्रदेश। पिन कोड है 473001। अब दें आज्ञा, नमस्कार। FM बैंड 102.3 MHz पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
1: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद।

0: नीम नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है, जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे?

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा।
2: हाँ,

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्धशीर बुड़जोर जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्धशीर बुड़जोर जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा
2: कि तभी आदि तत्काल उठे

0: हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
2: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जनसामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
3: जी सर,
4: हम पूरा ध्यान रखेंगे।
2: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
3: जी जनाब।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक फनकार। आज का ये पूरा आधा घंटा समर्पित है उस अभिनेता के नाम जिसकी मुस्कान पर लाखों दिल धड़कते थे, जिसकी हेयर स्टाइल युवाओं का फैशन बन गई थी और जिसने अपने करियर में गिरकर दोबारा उठना भी सीखा। जी हाँ, आज बात होगी बॉबी देओल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनकी पहली सुपरहिट फिल्म बरसात के बेहद प्यारे गाने से, जिसने हर प्रेम करने वाले के दिल को छू लिया था।

वाह क्या खूबसूरत दौर था वो भी, जब प्यार की मासूमियत इन गानों में महसूस होती थी। 1995 में आई बरसात ने बॉबी देओल को रातों रात स्टार बना दिया। उनका मासूम चेहरा और शांत अंदाज लोगों के दिलों में उतर गया। इसके बाद बॉबी ने लगातार कई हिट फिल्में दी और अब सुनिए उनकी फिल्म सोल्जर का वो गाना जो आज भी हर पार्टी और हर दिल की प्लेलिस्ट में शामिल होता है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमराज फिल्म का वह दौर जब बॉबी देओल रोमांस के बाद सा माने जाती थी, ये गीत अभी आप सुन रहे थे।

दोस्तों, बॉबी देओल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी आएं, अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे तो वो दोबारा चमक सकता है। एक समय था जब वो बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा रोमांटिक हीरो थे, पर आज वो अपनी दमदार एक्टिंग में से नई पीढ़ी के दिलों पर राज कर रहे हैं। इसी खूबसूरत सफर को सलाम करते हुए आपसे विदा लेती हूँ इस गीत के साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए सितारे के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फनकार, जो केंद्रित था बॉबी देओल पर। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। 10 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। देवास जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। शहरों में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि गांव में तापमान 45 डिग्री के आसपास घूम रहा है। दोपहर में सड़कें सूनी और लोग छांव तलाशते नजर आ रहे हैं। वे घाटेगांव विधानसभा क्षेत्र में क्लाइमेट ग्रीन इकोनॉमिक जोन परियोजना लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे हरित उद्योग, सौर ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश आएगा। विधायक आशीष शर्मा की मौजूदगी में कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में तय किया गया है कि इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जाएगा। इसी बीच जनगणना 2027 की तैयारियां भी पूरे जोर पर हैं। जिले में 1 मई से घर घर जाकर डिजिटल तरीके से मकानों की गिनती की जा रही है। अब तक 3,59,000 से ज्यादा मकानों का रिकॉर्ड तैयार हो चुका है। गर्मी के बीच पानी बचाने की मुहिम भी तेज हो गई है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत गांव गांव में कुएं, बावड़ियां और नदी नालों की सफाई हो रही है। वहीं शिप्रा नदी के घाटों पर भी साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। देवास नगर निगम ने कचरे को भी कमाई का जरिया बना दिया है। शहर से रोज निकलने वाला 60 से 65 टन गीला कचरा अब शंकरगढ़ प्लांट अभियान के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। सबसे दूर सबसे पहले अभियान के जरिए गांव में पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। देवास में कुपोषित बच्चों के लिए किलकारी अभियान 2.0 उम्मीद बनकर सामने आया है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को अमलतास अस्पताल में भर्ती कर मुफ्त इलाज दिया जा रहा है और अब तक 72 बच्चों को भर्ती कराया जा चुका है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। जिले में एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 12,457 बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। जिला जेल देवास में लगे विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। प्रधान जिला न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्रा ने बंदियों से सीधे चर्चा कर उनके मामलों की जानकारी ली। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 3 जून को मल्हार स्मृति मंदिर में विशाल प्लेसमेंट ड्राइव होगी, जहां 450 पदों पर भर्ती की जाएगी और चयनित युवाओं को करीब 17,000 रुपये वेतन मिलेगा। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन सख्त हो गया है। नेमावर, फतेहगढ़ और शिप्रा में बिना लाइफ जैकेट नाव चलाने, सूर्यास्त के बाद नौकायन और नशे में बोटिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स के लिए ऑनलाइन पंजीयन भी शुरू हो गया है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के इच्छुक छात्र 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिले के बीपीएल परिवारों के बेरोजगार युवाओं के लिए बैंक ऑफ इंडिया का आरसीटी केंद्र 30 दिन का मुफ्त मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करा रहा है, जिसमें रहना खाना ट्रेनिंग सामग्री सब मुफ्त मिलेगी। कोर्स के बाद खुद का काम शुरू करने के लिए सरकारी लोन दिलाने में भी मदद की जाएगी। इच्छुक युवक 9893193973 पर संपर्क कर पंजीयन करा सकते हैं। और आखिर में एक प्रेरणादायक खबर। ग्वालियर के बादल राजपूत ने सरकारी छात्रवृत्ति योजना से 33 लाख

0: की मेडिकल पढ़ाई पूरी की और अब दतिया में सरकारी डॉक्टर बनकर सेवा दे रहे हैं। अब सरकार ने ऐसे होनहार छात्रों की पूरी एमबीबीएस फीस उठाने का फैसला किया है। देवास जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
2: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम गुना। प्रस्तुत करता है राजकुमार कौशल।

0: हेलो एफएम गुना
1: सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: सर जी, सेवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, क्या करते हैं?
1: सर जी, एक्चुअली मैं ब्लाइंड हूँ सर।
0: अच्छा अच्छा, तो गाने आप सुनते रहते हैं या रेडियो पे कार्यक्रम आप सुनते रहते हैं?
1: जी बिल्कुल सर, आपके आकाशवाणी को मोबाइल पे सुनते रहते हैं सर।
0: मोबाइल में सुनते रहते हैं, तो किस तरह के प्रोग्राम आपको खास तौर पे पसंद आते हैं?
1: सर जी, मुझे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ हेलो फरमाइश अच्छा लगता है।
0: हेलो फरमाइश, आपको जो फोन इन कार्यक्रम ये वाला आता है हेलो एफएम गुना, ये पसंद आता है?
1: जी सर।
0: तो आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर जी, मूवी का नाम रहेगा मन।
0: मन फिल्म का कौन सा गीत?
1: सर जी, एक गाना है खुशियां और गम सहती है फिर भी ये चुप रहती है।

0: हेलो एफएम गुना में आपका स्वागत है।
1: मनोज खिवट बोल रहा हूँ, सिर्फ दारू से सर।
0: मनोज जी क्या करते हैं? मनोज जी
1: सर ऐसा ही काम वाम करते हैं।
0: किस तरह का काम?
1: मेहनत मजदूरी करते हैं सर।
0: अच्छा, साथ में आप रेडियो भी सुनते रहते हैं और मेहनत मजदूरी जो भी आप काम करते रहते हैं उसमें रेडियो भी चलता रहता है?
1: जी सर जी।
0: तो आपको क्या गाने ज्यादा पसंद आते हैं कि हमारे रोचक जो कार्यक्रम आते हैं ज्ञानवर्धक वो भी पसंद आते हैं?
1: कार्यक्रम भी बहुत पसंद आते हैं सर, आपके गाने भी बढ़िया पसंद आते हैं सर।
0: अच्छा, तो आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मोरा फिल्म पर सुनना।

0: हेलो एफएम गुना में आपका स्वागत है।
1: मनोज खेवट बोल रहा हूँ, सिपरौदा आरू से। सर
0: मनोज जी क्या करते हैं? मनोज जी
1: सर ऐसा ही काम वाम करते हैं।
0: किस तरह का काम?
1: मेहनत मजदूरी करते हैं सर।
0: अच्छा, साथ में आप रेडियो भी सुनते रहते हैं और मेहनत मजदूरी जो भी आप काम करते रहते हैं उसमें रेडियो भी चलता रहता है।
1: जी सर।
0: तो आपको क्या गाने ही ज्यादा पसंद आते हैं कि हमारे रोचक जो कार्यक्रम आते हैं ज्ञानवर्धक वो भी पसंद आते हैं?
1: कार्यक्रम भी बहुत पसंद आते हैं सर, आपके गाने भी बढ़िया पसंद आते हैं सर।
0: अच्छा, तो आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मोरा फिल्म पसंद।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर।
0: गंगाराम जी क्या करते हैं?
1: गंगाधर।
0: गंगाधर जी क्या करते हैं? गंगाधर जी
1: सर मैं 2024 में रिटायर हुआ
0: जी
1: और रेडियो सुन रहा हूँ सर अभी।
0: अच्छा, रिटायर होने के बाद

0: हेलो एफएम गुना।
1: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर।
0: गंगाराम जी क्या करते हैं? गंगाधर जी क्या करते हैं? गंगाधर जी
1: सर मैं 2024 में रिटायर हुआ
0: जी
1: और रेडियो सुन रहा हूँ सर अभी।
0: अच्छा, रिटायर होने के बाद

0: सर जी नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
0: सर मैं नीरज पुरी गोस्वामी बोल रहा हूँ, चौरसी कॉलोनी से गुना।
1: नीरज जी,
0: 2000 से सुन रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: जब तक सूरज चांद रहेगा गुना आकाशवाणी का नाम रहेगा।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: सर गाना सुनवा दो, फिल्म का नाम है याराना और गाने के बोले भोले ए भोले
1: भोले ओ भोले।
0: हाँ।

0: सर मैं अमर सिंह बील बोल रहा हूँ, ग्राम दिलवाली पटार, तहसील चपड़ा से।
1: अमर सिंह जी?
0: जी।
1: क्या करते हैं अमर सिंह जी?
0: कुछ नहीं सर, खेती किसानी करते हैं।
1: खेती किसानी के साथ साथ रेडियो भी सुनते रहते हैं?
0: हाँ रेडियो सुनते हैं सर, खेती किसानी के साथ साथ।
1: अच्छा अच्छा, आजकल तो बहुत सुविधा हो गई, मोबाइल पे ही ऐप पे आप सुन सकते हैं।
0: हाँ मोबाइल ऐप पे सुनता हूँ सर, रेडियो अब नहीं है। मोबाइल ऐप पे सुनता हूँ।
1: अच्छा, तो किस तरह के कार्यक्रम या गीत आपको पसंद आते हैं?
0: सर वैसे तो परमाशी कार्यक्रम

0: हेलो एफएम गुना,
1: मैं सर जी गौरव भैया बोल रहा हूँ।
0: आज इस कार्यक्रम में क्या सुनना चाहेंगे?
1: गाना सुनना थी मुझे मदर इंडिया का।
0: मदर इंडिया का कौन सा गीत?
1: वो दुख भरे दिन बीते भैया आपसे पाए।
0: क्या करते हैं गौरव जी?
1: सर जी मैं केरला से परेशान हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं साथ में? अच्छा,
1: घर पर रहता हूँ मैं, चलते फिरते नहीं बंदी। आवाज भी खत्म हो गई सर जी, आवाज।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने इलाज करवाया अपना?
1: इलाज करवाया, वो कोई आराम नहीं मिल रहा उससे।
0: चलिए हम दुआ करते हैं कि आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो आपका, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो एफएम गुना
1: नमस्कार।
0: जी, नमस्कार।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ। बंधु,
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम बाहुबली है
0: अच्छा, बाहुबली जी।
1: जी। ये तो हमारे माता पिता की देन है, इसमें मेरा तो कुछ हाथ नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए उन्हीं का आशीर्वाद रहता है। आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: तो पोस्ट बॉक्स नंबर 999, नींद ना मुझको आए, युगल गीत सुनना चाहूंगा।
0: चलिए, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, ये था रिकॉर्डेड फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम गुना। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं से बातचीत कर रहे थे जितेंद्र चौहान। तकनीकी सहयोग था मुकेश चौहान का, प्रस्तुति सहयोग था हरिशंकर शिवहरे का और प्रस्तुतकर्ता थी राजकुमार कौशल।

0: अभी आप सुन रहे थे हेलो एफएम गुना कार्यक्रम, प्रस्तुत करता थे राजकुमार कौशल। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। दो सुबह के 11 बजने वाले हैं, अगला प्रसारण मुंबई से होगा।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए सुनते हैं रंग तरंग कार्यक्रम का यह पहला गीत, जो कि है एक भक्ति गीत। इसे लिया गया है हे गोविंद हे गोपाल एल्बम से। चित्रा सिंह की आवाज है, रायदास ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है।

कभी किसी की तारीफ की है? कर लीजिए। अगर तारीफ किसी शहर से हो तो कुछ ऐसी ही गजल बनती है। कार्यक्रम रंग तरंग में आइए सुनते हैं खूबसूरत एल्बम की है गजल, तलत अजीज की आवाज में, आनंद बख्शी के पुल और समीर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज में हम तो हैं परदेश में, यह गजल राही मासूम रजा ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे अ गिफ्ट ऑफ सॉन्ग्स एंड गजल्स, इस एल्बम से अनूप जलोटा की आवाज में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को, जिसे लिखा है मुनीर ने। आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग, द खजाना कॉन्सर्ट, पेनाज मशानी की आवाज में मधुरानी की संगीत के साथ।

याद में तेरी इस खूबसूरत सी नज्म के बाद आइए सुनते हैं अगली नज्म, गजल उसने छेड़ी, इस एल्बम से चंदन दास की आवाज़ में, निदा फाजली के बोल और चंदन दास के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से चित्रा सिंह की आवाज में, इफ्तिकार माम सिद्दीकी ने इसे लिखा और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा पंकज उदास की आवाज में, जिसे संगीतबद्ध किया पंकज उदास ने ही। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला नगमा, जो कि होगा तलत अजीज की आवाज में।

हम सुन रहे थे नज्म आगाज द बिगनिंग सोनाली जलोटा इस एल्बम से। सोनाली जलोटा की आवाज में फैयाज जयपुरी के बोल और रूप कुमार राठौर के संगीत के साथ। कार्यक्रम रंग तरंग यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। दो पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री
1: है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में

0: है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
1: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपए और डीजल में 2.71 रूपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपए और डीजल 95.20 रूपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में

0: हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम सुना रहे हैं आपको कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की यादों की महफिल हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अगला गीत, आए दिन बहार के फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।
7: मेरे दिल से

हम सुन रहे थे गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हम सुन रहे थे ये गीत आशा फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। अब वक्त हो चला है कि ले लें एक छोटा सा विराम और सुनवा दें आपको ये संदेश यादों की महफिल में।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं अर्पण अपनापन फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल। और हम बता चुके हैं कि हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजे हुए गीतों को।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। एक सफर जो शुरुआत करता है एक इबारत के साथ, और वो इबारत लिखकर भेजते हैं हम आपको, और उस इबारत में होती है कुछ बातें, कुछ जज्बात, और छुपे होते हैं ढेर सारे गीत। आज की इबारत हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया पर इसे नहीं पढ़ा है। हमने आज इबारत भेजी थी कि मौसम का मिजाज बदला तो लगा जैसे आज मौसम बेईमान है पड़ा। आसमान में छाए हुए बादलों को देखकर वह मुस्कुराया और सोचने लगा कि अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करें। उसने तो कागज कलम उठाई और पर शब्दों ने साथ नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मैं शायर तो नहीं जो शब्दों का जादुई जाल बुन सकूं, पर सच तो यह है कि मेरा वजूद तुमसे ही है। यह जिंदगी और कुछ नहीं, बस एक प्यार का नगमा है जिसे हम दोनों मिलकर गुनगुना रहे हैं। तभी खिड़की से के बाहर से एक हवा का झोंका आया, मानो उसके आने की आहट लाया हो। सचमुच आने से उसके आए बाहर और देखते देखते फिजा बदल गई। उसकी एक झलक पाते ही शर्म के मारे बादलों की ओट

छुप गए सारे नजारे। उसने उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखा और हौसले से कहा, तुम पूछती हो ना कि मेरे दिल में आज क्या है, तो सुनो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी आम दुनिया में नहीं, बल्कि झिलमिल सितारों का आंगन जैसी किसी मखमली जन्नत में रह रहे हैं। ये प्यारी सी इबारत हमने भेजी थी आपको, और इस इबारत के साथ आपने भी बहुत सारे जज्बात लिख डाले हैं हमारे साथ में, और उन जज्बातों में बहुत सारी मीठी मीठी बातें भी हैं। जैसे हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बेईमान मौसम और लहराते बादल के बीच हवा के झोंकों से अपनी इजराहे मोहब्बत की बात जो किसी के आने के साथ बाहर छा जाए और फिर उसी का हाथ पकड़कर आंखों से आंखों और दिल की धड़कनों को सुनना एक नई दुनिया में ही ले जाता है जो जन्नत से कम नहीं होती। और इस बात को लिखते हुए हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज हम गीतों के बजाय अपनी इबारत लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी कलम कितनी खूबसूरत है ये इस बात से प्रदर्शित होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मौसम का मिजाज तो मत पूछिए साहब, गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर है और उस पर आज से नौ तपा शुरू हो गए हैं, देखिए गर्मी कहर ढाएगी, फिक्र की बात नहीं, गर्मी कितनी क्यों ना हो, आइए विविध भारती की रेल पर और तय करिए सुरीला सफर, हो जाओ ठंडे गीतों की बूंदों से सराबोर। बिल्कुल सही बात है, हमारा सफर भी तो साथ में यूं ही कट जाता है ना। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, आपकी वजह से हम गर्मी का एहसास भूल जाते हैं और विविध भारती के सुरीले सफर में रम जाते हैं, सबका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और सफर कट जाता है, एक घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता, बहुत अच्छा उपाय है। हाँ, ये उपाय तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा है इस गीत के लिए, जो गीत मैं आपको पहला गीत सुनवाने वाली हूँ, वो लिख रहे हैं कि गीत ऐसा लगता है जैसे कोई अपना इंसान धीरे से दिल को समझा रहा हो कि जिंदगी भागती जरूर है लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत चीज रिश्ते और यादें होती हैं। इस गाने की सबसे प्यारी बात यह है कि ये मोहब्बत का शोर नहीं, सुकून बनाकर पेश करता है, ना दिखावा ना बड़ी बातें, बस एक सच्चा एहसास है कि अगर साथ अपना हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। बहुत सही बातें आपने लिखी हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सुरीला सफर। और सुरीला सफर का ये पहला गीत आपको सौंपने से पहले आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम के प्रत्येक गीत को हमने लिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को आप सबने सुना है, लगभग 6000 गाने हैं और उन 6000 गानों में से कुछ गाने चुनकर हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो हम आपको दो प्रश्न सौंपकर इस गीत के साथ जा रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये है, जो गीत हमको हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वह गीत किस गीतकार ने लिखा है, उस गीतकार का नाम बता दीजिएगा, बस इतना ही सरल सा प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न ये है जो कि पूरे कार्यक्रम में आप साथ में चला सकते हैं, आप बस ये बताते जाइए कि हो सकता है मेरे सुनवाए गए गीतों में से या फिर जो गीत अभी हमने नहीं चुने हैं उनमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ कौन सा गीत है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आपकी पसंद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों में से बताइएगा जरूर, और सुनिए ये गीत और बताइए इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे शोर फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक ने लिखा कि इस गाने के गीतकार है संतोष आनंद, जो इतने आनंद से गाने लिखते हैं कि श्रोता को संतोष हो जाता है सुनकर। बिल्कुल सही बात है। हमारे दूसरे श्रोताओं ने भी इसका उत्तर दिया है और कई लोगों की भारत में जो उन्होंने गीत पसंद किए थे वह उन गीतों में से एक है। और हमारे श्रोता ने लिखा है संतोष आनंद जी, जो बहुत

0: मैं ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत उनका फेवरेट गीत है, तो हमें बहुत खुशी है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके पसंदीदा गीतों में से यह गीत है, और जब भी सुनते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। जीवन की सच्चाई यही है, और सच्चाई के साथ अगर अश्रुधारा आती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि ये जो गीत हैं ये बड़े खूबसूरत से हैं, और इन गीतों में से उन्होंने कई सारे गीत पसंद किए, पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद जो गीतकार हैं ये हमारे पास के ही पिलखुआ कस्बे के रहने वाले हैं, और व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं ये उनसे, और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। कितनी अच्छी बात है ना, आप सब एक अच्छे महान व्यक्तित्व से मिल पाते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत सारे गीत पसंद हैं, और जिंदगी की फिलॉसफी की व्याख्या करता है ये गीत, लगभग सभी गीतों की महफिल की जान होती है। ये गीत बहुत खूबसूरत है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत अच्छा संगीत दिया है इस गीत को, और हमने आपसे पूछा कि आपके पसंदीदा गीत कौन है, तो अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट आप डालते जाइए, शायद कभी कहीं किसी रोज हम आपके गीत बजवा सकें। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इन फिल्मों के हिसाब से। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर आज संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीत ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज महान संगीतकार जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि भी है। आज भी इस महान संगीतकार का संगीत हमारे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता इस इबारत को पढ़कर बहुत खुश हो गए, और उन्होंने लिखा कि वह सुनने वाले नहीं थे, लेकिन उन्हें इबारत पढ़कर लगा कि क्यों नहीं सुन लिया जाए, प्रोग्राम सुनो तो परेशानी कम हो जाएगी। देखिए, संगीत और रेडियो जो है वो आपके जीवन की कई सारी चिंताओं को दूर कर सकता है, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी कविता बनाई है कि आसमां में छा गए बादल तो मौसम का मिजाज बदल दो, कागज कलम उठाओ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, शायर नहीं तुम जादूगर हो, शब्दों का जादुई संसार बुन दो, जिंदगी का गीत गुनगुना लो, प्यार का नगमा लिख दो, हवा के झोंके के साथ बहार आई है, आंखों से दिल की बात कह दो। और जब इतनी अच्छी बात कही है तो अगला गीत सुनवाना बनता है, और अगले गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं। बस इतना बताइएगा ये जो अगला गीत आप तक आ रहा है, इस अगले गीत के गायक कलाकार कौन है, और बहुत खूबसूरत सा गीत है। और बस बताते रहिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन सा है आपका। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और बतानी है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म जो संगीत की यात्रा शुरू की, उसकी पहली फिल्म कौन सी है बताइएगा जल्दी से। पहली फिल्म का नाम बता दीजिए जो उन्होंने पहली फिल्म बनाई है, और साथ ही इस गीत के गायक कलाकार।
1: मेरे दिल में आज

हम सुन रहे थे ये गीत दाग फिल्म से साहिर लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इस गीत को गाया किसने है, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म दाग का ये गीत है जो सही लिखा है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। गायक है आभास कुमार गांगुली, आभास कुमार गांगुली मतलब किशोर कुमार। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं से हमने एक प्रश्न और पूछा था कि उनकी पहली फिल्म कौन सी है, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि एलपी की पहली फिल्म पारसमणि 1963 की, इसी से उन्होंने डेब्यू किया था। जी बाबू भाई मिस्त्री की ये फिल्म जिसने उनके जीवन के इस संगीतमय जीवन के इस करियर की शुरुआत की थी। और उसके साथ ही जो हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा उसका उत्तर आप सभी ने बहुत सटीकता से बहुत अच्छे से दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर हमें भेजा करते हैं, तो हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मौसम हमें नई परिभाषा चुनने का सुख देता है, बदलते मौसम के साथ मन की गांठें बदलती हैं, खुलती रहती हैं। बर्फीली झील पर कोई बादल सरक कर पूरे वजूद पर छा जाता है तो लगता है खत लिखूं, मगर कागज कलम हाथ में आते ही सब भुला जाता है। जीवन का सार बस इतना ही है कि यह प्यार का नगमा है, जीवन का सच्चा सुख छोटी छोटी बातों में है, एक मुस्कान शांति का पल और प्रियजनों का साथ। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है ना, और ऐसा ही साथ हम सबका बना रहे ये प्रार्थना भी हम ईश्वर से करते हैं। हम आपको अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं और इस गीत को सुनवाते सुनवाते बस एक प्रश्न मन में आता है कि एक और गाना, यानी ये गीत नहीं है वह, लेकिन एक गीत है जो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने अपने गुरु को समर्पित किया है, उसमें उन्होंने उस अपने उन गुरु का नाम भी लिया है, तो जरा याद करें और बताएं कि कौन सा गीत था और किस गुरु के लिए वो समर्पित किया गया, जरूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत है आप सुनिए और बताइएगा कि ये आवाज कौन सी है, अगर आप गायक को पहचान पा रहे हैं तो गायक को पहचानिए भी। और दूसरा प्रश्न एक और हमने आपके साथ रखा है, वो बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है जो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया और उन गुरु का नाम क्या है।

गायक की आवाज को पहचान लें तो हमें जरूर बताएं। तो आपने गायक कलाकार की आवाज को पहचाना और बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये जो गायक कलाकार हैं वो शैलेंद्र सिंह हैं। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि एक गुरु को एक समर्पण दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा, जिनका नाम उन्होंने एक गीत में प्रयोग किया, तो वो गीत कौन सा है? तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना कि लक्ष्मीकांत प्यारे जी के गुरु का नाम एंथनी गोंसाल्विस है, जिसका जिक्र अमर अकबर एंथनी फिल्म में माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस इस गीत के साथ हुआ है। ये बात हमारे श्रोताओं ने पहचानी है और आपकी इस पहचान के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ज्ञान इतना अच्छा है। और हमारे श्रोता बड़ा दुख लिख रहे हैं कि इंसान को गर्म किसी भी मौसम में चैन नहीं है। गर्मी में हाय, बरसात हो तो बहुत बारिश हुई है और ठंड हो तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो देखिए असर तो पड़ता ही है हमारे ऊपर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और उन्होंने इस बात को लिखते हुए बताया है कि एंथनी गोंसाल्विस जो है वो उनके वायलिन के गुरु रहे हैं, प्यारे लाल के वायलिन गुरु एंथनी गोंसाल्विस, जो 50-60 के दशक में वो इंडिया के फेमस म्यूजिक अरेंजर थे और हर वाद्य यंत्र बजाते थे। जब अमर अकबर एंथनी के गाने के बोल लिखे जा रहे थे तो प्यारे लाल जी ने अपने गुरु को ट्रिब्यूट देने के लिए ये गाने के बोल में एंथनी गोंसाल्विस नाम डलवा दिया। कितनी बढ़िया बात है कि कोई अपने गुरु को कितना प्यार कर सकता है, और यही बात यहाँ पर आई है और इतनी खूबसूरती के साथ आप सबने सजाया है। और अब हमारी इबारत को लेकर हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बदलते मौसम का प्रियतम की याद आना प्रवास जनित विरह या ऋतु विरह है, जहाँ प्रकृति का परिवर्तन प्रेमियों के हृदय में छिपी उत्कंठा को और अधिक तीव्र कर देता है। इसे ऐसे भी समझा जाना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन उस शाश्वत मिलन की तड़प को और बढ़ा देता है। विरह की पीड़ा प्रेम की पूर्णता और गहराई का प्रमाण बन जाता है। बहुत अच्छी बात लिखी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम का मिजाज जब बेईमान हो जाए तो आसमान में बादल भी मोहब्बत का इजहार करते प्रतीत होते हैं। खिड़की से आती हवा का झोंका और कागज कलम को छूता है और दिल अपने आप प्यार का नगमा लिखने लगता है। फिजा की मैं ऐसी मिठास घुल जाती है कि छुप गए सारे नजारे भी सितारों के आंगन में अपनी चमक बिखेरने लगते हैं। उस पल में प्रकृति प्रेम और एहसास मिलकर जीवन को एक सुंदर कविता बना देते हैं। कितनी अच्छी बातें आप लिखते हैं। और इन्हीं अच्छी बातों के बीच में मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। अगला गीत बड़ा प्यारा सा है। आप उस क्रम को मत तोड़िए जो मैंने आपको शुरुआत में दिया था कि आपका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन है, कौन सा है, आप जरूर हमें बताइए, क्योंकि ये गीत जो है वो दिल को छूते हैं। अब मैं अगला गीत आपको सौंप रही हूँ। इस गीत के साथ में भी दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि ये जो गीत है इस गीत को किस फिल्म से लिया गया है। जो गीत आप सुनने वाले हैं उसकी फिल्म का नाम बता दीजिएगा। और अब दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कितने फिल्मफेयर अवार्ड मिले हैं, कितने फिल्मफेयर अवार्ड उन्होंने जीते हैं संगीतकार के रूप में, बेस्ट संगीतकार के रूप में कितने मिले हैं, जल्दी से बताइएगा। और ये भी बताइए कि इस गीत के फिल्म का नाम क्या है।

0: फिल्म से है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लोफर फिल्म से है। और आप सब इस गीत को पसंद करते हैं ये सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा। पर हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था, दूसरा प्रश्न ये था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार के रूप में कितनी बार फिल्मफेयर अवार्ड मिले, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया 7 बार। और बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपने हमें उत्तर दिए हैं। जैसे आपने हमें बताया कि 1964 में पारसमणि फिल्म के लिए, 1968 में मिलन के लिए, 1970 में जीने की राह के लिए, 1978 में अमर अकबर एंथनी के लिए, 1979 में सरगम के लिए, और 1979 में सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, सरगम के लिए, 81 में कर्ज के लिए, कई सारी फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिले। हालांकि 25 बार नॉमिनेट हुए और जीते 7 बार, ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। एक और प्रश्न मेरा आपसे था अगला गीत सौंपने के पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले ये संदेश जो है वो सुन लें और उसके बाद वापस जुड़ें इस धारा के साथ।
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सुरीला सफर। और इसी सफर में हम यात्रा कर रहे हैं बहुत सुंदर नगमों के साथ, और उन्हीं नगमों में हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी इबारतें लिखी है। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आया मौसम सुहाना रे, ठंडी ठंडी हवा का तराना रे, कभी धूप कभी बारिश आई, प्रकृति ने सुंदर छटा सजाई, पेड़ पौधे झूमे प्यारे, मौसम लगे सबसे न्यारे। और ये बात लिखने के बाद उन्होंने बड़ी प्यारी सी मौसम के बारे में जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीली प्रस्तुति, सुरीली गीतों से श्रोताओं को बाहर तेज धूप के बावजूद हमें मौसम का मिजाज जरूर बदला लग रहा है, ठंडक महसूस हो रही है। जी, हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी भेजी है कि आज के फनकार कार्यक्रम में मैंने सुना कि लक्ष्मीकांत जी का जन्म लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था, इसीलिए परिवार वालों ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया। आज आपने सुबह आज के फनकार सुना, ऐसे ही एक और कार्यक्रम है 7:45 पर आएगा स्मृतियों के स्वर। भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये दूसरा भाग है। आज शाम को 7:45 जरूर सुनिएगा स्मृतियों के स्वर। और आप जो विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं, सुरीला सफर सुन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दे रहे हैं, तो इन्हीं उत्तरों और प्रश्नों के बीच में मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि आप बता सकते हैं क्या कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं उन्होंने सबसे अधिक गीत किससे गवाए हैं, यानी कौन सा गायक था जिन्होंने सबसे ज्यादा गीत गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए। आप जरूर बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहती हूं, तो जरूर से बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, तो बता दीजिए कि इस ये जो गीत है ये किसने लिखा है, यानी गीतकार कौन है। दोनों प्रश्नों के उत्तर जल्दी दीजिए और सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये सुंदर सा नकमा, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज हम याद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके गीतों के साथ में, और हमने दो प्रश्न आपसे पूछे थे। पहला प्रश्न था कि ये जो गीत है वो

हम सुन रहे थे जीने की राह फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि आनंद बख्शी हैं। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक गीत किसने, यानी किसने, किस गायक या गायिका ने उनके लिए गाए हैं। तो हमारे श्रोताओं ने अंदाजा लगाया है कि कोई कह रहा है कि लता मंगेशकर ने ज्यादा गाए हैं, कोई कह रहा है मोहम्मद रफी ने ज्यादा गाए हैं। तो आप भी विचार कीजिए, इस बात पर विचार करते रहिए, जरूर से ढूंढिएगा किसने सबसे ज्यादा गाने गाए हैं। हालांकि ऐसा कहते हैं कि लता मंगेशकर ने सबसे ज्यादा 700 से अधिक गाने गाए हैं उनके लिए, ऐसा कहा जाता है। पर फिर भी आप भी खोजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न है तो प्रश्न तो रहना ही है, जीवन में ये प्रश्न रहना चाहिए ताकि आप उसका उत्तर ढूंढ सकें। ऐसा भी कहते हैं कि लता मंगेशकर ने लगभग 712 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए, बहुत अच्छी बात है। और अब ये जो गाने और इन सब की जो बात है, इन सब के साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो है उनके साथ में, यानी दोनों ने साथ में आखिरी कौन सी फिल्म थी जिसके लिए संगीत दिया था?

जरूर से बताइएगा। लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की साथ में आखिरी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और अगला गीत जो है उसके गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत। अगले गायक कलाकारों के नाम बताना है और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की आखिरी फिल्म जो साथ में उन्होंने की थी, जरूर से बताइएगा।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत को लेकर बहुत सारे उत्तर दिए हैं और लिखा है कि दो रास्ते फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि काजल लगाए दिन में रात हो गई ये तो बजना ही था, फिल्म दो रास्ते का युगल गीत जिसके बाजार में आने पर तहलका मच गया था। बिल्कुल सही बात है। और हमारा एक श्रोता, एक लड़का मुझे देखकर ये गाना गा रहा था, मेरी शादी हो गई, उसके दोनों बच्चे भी हो गए, 1994 की बात है, आज बरबस याद आ गई, उड़ासी भी आ गई, साथ में आपके पति देव भी मुस्कुरा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे परिवार को कितना खूबसूरत एक बहुत प्यारा सा समय देते हैं। और हमने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो अंतिम फिल्म है दोनों के साथ में, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अंतिम फिल्म मेरी बीबी का जवाब नहीं 2004 में आई थी, जो लक्ष्मीकांत के 1998 में निधन के बाद 6 साल बाद रिलीज हुई। यह फिल्म काफी समय से अटकी हुई थी और इसमें प्यारेलाल ने संगीत संयोजन पूरा किया। बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। आज हमारे बहुत कम कमेंट्स पड़े जा रहे हैं, ऐसा भी हमारे श्रोता ने शिकायत की, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं, कमेंट लिए ही नहीं, आपने लिखे भी नहीं। तो चलिए हम अब चल रहे हैं आज के अंतिम गीत की तरफ। आप सबने अपना पसंदीदा गीत बताया था और हम अपना पसंदीदा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत बहुत प्यारा सा है और ये गीत हमने लिया है जीवन मृत्यु फिल्म से। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

और इसी के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं समाप्त होता है, पर उसके पहले हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम सब मानवीय जीव जंतु, समुद्री प्रजातियां, पेड़ पौधे सब कुदरत के गुलाम हैं। हमें कुदरत के नियमों का पालन करना चाहिए, गर्मी ठंड बारिश इन सब का ध्यान रखना चाहिए और जो कुछ कुदरत दे रही है उसका हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे सभी साथियों का भी यानी सभी प्राणियों की मदद भी करनी चाहिए। तो आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, जीवन में शांति हो, सुकून हो, ये प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ कार्यक्रम सुरीला सफर से। नमस्कार।

दोस्तों, ये वो समय है जब परीक्षाओं के नतीजे आने लगते हैं। कुछ लोगों का जश्न होता है, कुछ का दिल जलता है। उनके नंबर मन के मुताबिक नहीं होते और उनका दिल टूट जाता है। अफसोस है कि हमारे यहाँ बच्चों पर सबसे ज्यादा अंक लाने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि बच्चे रेस में दौड़ने वाले घोड़े की मानिंद बन जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुकिए और बच्चों के साथ बैठ कर रिजल्ट डिस्कस कीजिए। उन्हें बताइए कि परीक्षा के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

तो जैसा कि हमने आपको समझाया, परीक्षाओं के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते। ये सच है कि 12वीं में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने में आसानी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं के नतीजों के आधार पर लोगों का करियर डिसाइड हो जाता है और उनकी जिंदगी का फैसला हो जाता है। बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है और उसके आधार पर वो अपना प्रदर्शन करता है। किसी भी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ कतई नहीं की जानी चाहिए। ये मानना चाहिए कि हमारे बच्चे की अपनी एक यात्रा है और दूसरे बच्चों की अपनी अलग यात्रा है। किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बच्चों की पढ़ाई में विषयों का निर्धारण भी उनकी दिलचस्पी के आधार पर ही होना चाहिए, न कि दुनिया में क्या चल रहा है या दूसरे बच्चे ने कौन सा विषय लिया है, इसके आधार पर इस बात का निर्णय किया जाए। अगर आप बच्चों को दबाव डालकर कोई विषय दिलवा देते हैं तो मुमकिन है कि इसका असर उसके प्रदर्शन पर पड़ेगा और हो सकता है कि आपके इस्तेमाल से उसकी जिंदगी बेकार हो जाए।

0: दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जब विषय चुनने होते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उनकी दिलचस्पी क्या है, न कि दबाव डालकर उनकी रुचि के उलट विषय आपको उन्हें सिलेक्ट करवा देना चाहिए। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी जैसे नाम मात्र के विकल्प नहीं रह गए हैं, बल्कि बच्चों के सामने तरह तरह के क्षेत्र हैं और कोई भी बच्चा अपने मन चाहे।
1: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रदेश है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा के अवसर पर आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में धार में प्रदेशव्यापी जन सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री आज धार की भोजशाला में मां वागदेवी पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण वर्तमान और भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसके लिए समाज के हर वर्ग की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है। प्रदेश के सभी प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में जन समुदाय और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से स्थानीय कुओं, नहरों, बावड़ियों और तालाबों की साफ सफाई, घाटों की स्वच्छता और पुराने बंद पड़े बोरवेल के पास रिचार्ज पिट निर्माण जैसे जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत नीमच के हाथी मंदिर घाट पर साफ सफाई के लिए श्रमदान किया गया। वहीं अशोकनगर, छतरपुर, सतना, ग्वालियर और रायसेन सहित प्रदेश के सभी जिलों में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल किए जाने का निर्देश दिया है। भोपाल में राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा आज आयोजित स्कॉलरशिप वितरण समारोह में दो मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 850 बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। डॉ यादव ने छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि हजारों विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करने का माध्यम है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। यह सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है और गर्मी अपने चरम पर होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। कल यानी रविवार को खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म रहे। यहां पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी भोपाल में 42.7, ग्वालियर में 44.1 और जबलपुर में 43.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
2: मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpkhadigramudyog.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन

सऊदी अरब के मिना में इकट्ठा हो रहे हैं। इस वर्ष की हज यात्रा में भारत से लगभग 1,75,000 यात्री भाग ले रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने एक सुचारू, सुरक्षित और आरामदायक हज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी जिले के गौरव दिवस पर आज मां नर्मदा के घाट पर विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शिवपुरी जिले में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आज पेयजल समस्या, खाद वितरण, उपार्जन की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नरेट के मुताबिक भोपाल में पेट्रोल 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये हो गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
3: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
4: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है।

एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहे। बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

0: जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया।

0: करता है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जारी

0: सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रही हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटे की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे बसंत बहार फिल्म का ये गीत, भीमसेन जोशी मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है जलदीप फिल्म से। सुधा मल्होत्रा, स्नेहल भाटकर ने इसे गाया है, कैफ इरफानी ने इसे लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तनिया,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे चल रहा है, आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज में।

हम सुन रहे थे आलमारा फिल्म का यह गीत। आशा भोसले की आवाज में शेवन रिजवी ने इसे लिखा और एआर कुरैसी ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चल रहा है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत। चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में, हसरत जयपुरी के हैं बोल, शंकर जयकिशन का है संगीत।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं परिवार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ।
4: दत्त मुरली की धुन सुन आई दाते जमुना के तट पर निरत करत उठ हिरत ऐसी चंद तपन दिग्नाथ राम तत थई राम तत थई

是唯一的。大腿呀腿呀腿，大腿呀腿呀腿，大腿呀腿呀腿。

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आज का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जो कि है फिल्म फंटूश से आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देवर्मन का है संगीत।

0: ही सहेली
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। आप सभी को विधि जैन
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: आरती जी स्वागत है आप सभी का।
2: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपका भी है और आज हम दोनों पहली बार शायद
1: साथ में सखी सहेली कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
2: और हम सभी अपने श्रोताओं को सभी सखियों को सभी सखाओं को नमस्कार कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है खेलते रहना है उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल रुकना नहीं है बस खेलते जाना है।
1: जी
2: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारी मानसिक जो विकास है जो हमारी जो शांति है उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और विधि इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की जो कहानी है बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं।
2: हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ सफर पर तैयारी करके निकले वरना सफर करना पड़ सकता है।
2: हाँ बिल्कुल वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल। तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकले और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं।
2: जी आज हम बिहार की व्यंजन की बात करेंगे जो है खाजा और रसिया।
1: जी तो खाजा तो हमने खाया है रसिया हाँ। हमने नहीं खाया है तो
2: रसिया हम सुनते भी हैं
1: जी
2: जो बिल्कुल गीत भी होते हैं लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
1: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है तो शायद खाने वाला भी बड़ा
2: मीठा होता है।
1: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं बहुत प्यार से आई हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही है। और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो लाए हैं वो है प्रायश्चित जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले

0: सुन लेते हैं।
1: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित।

अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची, सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या

0: पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दाव से कब्री पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कब्री देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कब्री रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कब्री दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कब्री न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: हैं? ये क्या हुआ? हाय राम, दैया रे दैया, बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई।
2: हैं?
1: लागत का है, सच्चो मर गई। हाय, हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया। माँ जी,
2: ये तो गजब हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना? हम तो रसोई न बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ,
3: कहती तो ठीक हो तुम सब। अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए, तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। अरे बहू, बहू ये क्या कर डाला है?
1: अब क्या हुई अम्मा जी? हाँ, कहो तो पंडित जी को बुला लें हम।
3: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ, जाओ जल्दी से, जाओ जाओ पंडित जी को बुला लो।
0: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
4: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
0: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब मंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहुत से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
3: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है बताइए जरा।
4: हाँ हाँ, पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। ये हाँ, अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिश्रानी, ये हुआ कब?
2: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
4: 7 बजे सुबह।
0: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
4: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
3: तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
0: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ

0: फेरते हुए उन्होंने कहा,
1: रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है। अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
2: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
1: किया क्या जाए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, बस हरे कृष्ण।
2: हाँ हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
3: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए।
0: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
1: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की मां, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की मां, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हां, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण।
2: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना।
3: पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
1: रामू की मां, एक तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण।
0: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
1: हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की मां, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण।
3: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा।
1: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
2: अरे बाप रे बाप, इतना सामान।
3: अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हाँ?
1: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की मां, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
2: ओ नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
0: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा,
1: रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण।
3: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
1: रामू की मां, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला।
3: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूं भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है।
1: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
3: अच्छा।
1: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले

0: भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
1: ऐसा?
0: हरे कृष्ण
2: हाँ, ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं। पंडित जी के तोन तो देखो।
0: अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की मां, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए।
3: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
4: अरे अमर जी,
1: हाँ
4: जी, तो
1: क्या हुआ बोलो तो।
2: अरे हुआ का, बताओ
4: बताए अमर जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
0: क्या, क्या? बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण हरे कृष्ण।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
2: और वो भी भाग गए
1: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं
2: बिल्कुल।
1: और

0: तो आरती स्वागत है फिर से सखी सहेली में। हाँ। और पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया, देखो रूठा ना करो, अब तक मान गए होंगे। अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर सकते हैं। पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं
2: जी।
1: तो इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
2: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया।
2: और
1: बहुत
2: ये
1: अच्छा।
2: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता,
1: बिल्कुल
2: के बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
1: बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
2: बिल्कुल, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती देखिए, खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
2: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है, वो पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है,
1: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है क्योंकि वो, और दिमाग भी उसे सक्रिय होता है क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मजेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
2: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है, जब हम बचपन में थे और खेला करते थे तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले आते थे।
1: इस खेल की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
2: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ।
1: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपको जो सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने में
2: कैलोरी यहाँ पे खत्म कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल। तो आरती, ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
1: वाह, बहुत बढ़िया बात।
2: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना, तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर झुकाकर जीत स्वीकार करो और हार जाओ।
1: जिस पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है।
2: हाँ,
1: जिस पे कुछ नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
2: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है।
2: बहुत बढ़िया चीज है ना, देखिए बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए।

0: हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
1: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार से इस खेल में उनको डाल दिया तो।
0: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत बढ़ेगी, और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा, और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहां से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है। शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है,
1: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं। एक जब हम बॉल को पास करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस पर विश्वास रखे कि वो गोल कर देगा,
0: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे
1: जी।

0: हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, एक कमेंट है। तो हमारे जो श्रोता है वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है। जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती है। ये तो सही बात है। टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी न किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन एक खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत, बहुत।
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है या घूमने जाना है।
1: ठीक है, तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं, और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे ये पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
1: बड़ा अच्छा लगता है कि ये भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब साथ में खा रहे होते ना तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वही चीज खा रहे होते तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और आरती एक चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पुड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी खुशी हमारे तक आ जाती है।
1: और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
0: जी बिल्कुल, और उस सबके साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना, मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयां, सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं, तो जो भी जा रहा है हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयां ये जरूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनके लिए जो दवाइयां रहती हैं वो आप जरूर अपने साथ में लेकर चलें।
0: बहुत लेके चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है।
1: क्या
0: वो होता है? टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग।
1: सबसे पहला काम
0: अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहां जा रहे हैं वो सब चीजें अच्छे से पता कर लें। और सामान्य दिया जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है, और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं। और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है, ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाए।
1: बिल्कुल,
0: तो पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताइए, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए। और हम इसी के साथ में कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसमें झगड़े होते हैं कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए ये तो।
0: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको बहुत संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल

0: एक बेहतरीन ब्रेक है, बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, ये सही कहा।
0: जाने कब कहाँ कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये दो चीजें
1: जरूर
0: होना चाहिए।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है। पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत जरूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखिए, उन्हें चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
0: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कन्फर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ओआरएस की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतः गाड़ियां जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
1: बिल्कुल।
0: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हों तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी, टकोर, मतलब इन्होंने जहां जहां लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सब परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार, जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप ये सहूलियां रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें दो चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहां के भोजन, इनका आनंद जरूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल।
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके, अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतया जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर के तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो विधि एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: देखनी है।
1: तो आरती, एक ऐसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है, जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था, और जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा हाथ दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे, रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
2: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे, और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
1: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, ये तो सतर्क सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना, और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है। तो विशेष ख्याल रखें, और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। रात्रि में यात्रा करने से बचें, और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
2: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता

0: लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
1: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ। अच्छा। बड़ा आनंद आता है,
0: सच में अच्छा लगता है क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
1: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वहीं मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे इसे तलना होता है। तो घी, अच्छा। जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं। तो आप मोयन डालते हैं, और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। अच्छा। मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है, और इसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है, और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोए तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है, और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
0: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बताते हैं, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें। इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है, और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छानकर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है, उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आंच पर पकाइए, तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं, और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं, स्वादिष्ट आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
1: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा,
0: बहुत अच्छा लगेगा।
1: इतना आइसक्रीम जैसा गले में, सुदिंग सुदिंग
0: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
1: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं राजस्थान के हिसाब से। तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है, और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं गीत
1: जी।

0: तो आरती,
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है। हाँ। कहा है कि जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए।
2: हाँ।
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
2: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है।
1: विधि,
2: विक्ट्री विधि। सो वो कहती है कि क्या क्यों कहूं, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूं, हंस रही हूं चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात
1: बहुत,
2: है, ऐसे ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए, जिंदगी खुश रहने के लिए है। और सखी सहेली सुनते रहिए
1: सुनते रहिए।
2: तो आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ, अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं, और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे, थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है, इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो। तो ये थायराइड है क्या, इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी, आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है, दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी
1: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी जी।
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
0: जी,
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
0: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब,

0: हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है, ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
0: अच्छा।
1: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
0: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की।
0: याराना फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज में, सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है।
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं, खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीजों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते हैं हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है
0: सप्लीमेंट्स,
1: मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहां पे आप जो नेचुरली चीजें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है, और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
0: तो देखिए आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हटके सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं, और मन से ही हो जाते हैं कई बार, तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है, और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते
1: हैं। हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है
0: जी,
1: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए, हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
0: जी जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर, तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
1: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
0: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय, लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है, काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है,

0: थायराइड कैंसर हो गया, बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायराइडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायराइडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले? हाँ,
1: हाँ उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
0: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है।
1: निदान
0: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3 T4 TSH का।
1: जी
0: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
1: अच्छा
0: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
1: अच्छा
0: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है हमको। पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी,
1: अच्छा
0: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है,
1: अच्छा
0: और ये अनिवार्य है।
1: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया, जैसा
0: पॉजिटिव,
1: कि आपकी यूनिट के बाहर या कम जो
0: हाँ
1: होता
0: रेंज के
1: है,
0: बाहर,
1: रेंज के बाहर, तो आप क्या मानती हैं उसको?
0: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
1: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए
0: अगर
1: है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण
0: जैसे
1: दिखाई देते हैं?
0: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है,
1: जी
0: इसको हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: जी जी जी
0: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि ये
0: हाँ,
1: लेवल क्या है
0: लेवल
1: बीमारी
0: क्या
1: का।
0: है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपर थायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
1: जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
0: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
1: काला बाजार,
0: काला बाजार।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने, तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी जी,
1: विटिलिगो मतलब सफेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज्यादा है, मतलब लूज मोशंस।
0: जी।
1: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है।
0: जी।
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम हो,
0: त्वचा रोग,
1: तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़ क्या है,
0: किधर है।
1: एग्जैक्टली, रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है
0: जी,
1: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे

0: उसमें 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया है, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है. हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है.
1: जी,
0: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या जो चिकित्सा है या उसका
1: आसान
0: जो
1: हो जाती है.
0: हाँ, क्योर है, वो जल्द हो जाएगा.
1: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा, और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है. लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें. और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे, अगले गाने के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे.
0: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
1: चित्ररेखा फिल्म का गाना है ये.
0: हाँ.
1: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
0: जरूरत
1: लेकिन
0: है.
1: प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा.

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफी ने गाया और चित्रलेखा फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग

0: सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
1: हिस्ट्री क्या है,
0: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं मतलब दबा देते हैं
1: जी,
0: तो वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
1: वो कैसे?
0: एक है मेंटल मानसिक और एक है फिजिकल।
1: जी,
0: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, पड़े है, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है आग बबूला होना।
1: जी जी,
0: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है।
1: जी जी,
0: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान
1: जी।
0: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक
1: फोबिया,
0: हाँ धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की। एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं ऐसा नहीं होता। मानसिक चीजों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
1: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाए।
0: तब क्या, नहीं तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
1: सब ठीक है,
0: सब ठीक है। तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल
1: जी।
0: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
1: फिजिकल
0: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड ये वो वाला ना,
1: सारी विषैली चीजें,
0: हाँ
1: तत्व जो है अंदर रहते हैं,
0: हाँ तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर प्राकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी, ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
1: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
0: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता है कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
1: जी जी,
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि

0: लिवर या कोई भी ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं. तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले
1: जी.
0: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रियाएं, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़. तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री, मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है. एंड लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री,
1: इतिहास क्या है परिवार का.
0: अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
1: हेरिडिटरी कैरेक्टर,
0: हेरिडिटरी. अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है
1: जी.
0: उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है. तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ. ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं. मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा. ऑप्टिमम लेवल, मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा. और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है.
1: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा. चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे.
0: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
1: बैजू बावरा. सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत.

0: बैजू बावरा फिल्म का यह नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के गूगल पे सर्च करके सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए, इतना आसान नहीं है। मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षण जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात है,
1: दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग मतलब
0: पसीना
1: बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा, तो कैसे सिलेक्ट करते कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देख के
1: लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है,
0: एक इंडिकेशन होता है,
1: एक इंडिकेशन। जैसे थायरॉक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरॉक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
0: थोड़ी मेहनत करने पे ही वो थक जाता है,
1: बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था, ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
0: क्या बात है,
1: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरॉक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल, आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा
0: मायूस
1: सा बेचारा, हर एक चीज पे थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीजें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरॉक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरॉक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है, हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है, और वो जब भी पूछते हैं तो थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या कृश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
1: क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं,
0: मतलब सामान्य अवस्था में आ रहा है।
1: सामान्य अवस्था, डिजीज होता क्या है, डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले
0: जी,
1: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है
0: जी जी। और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
1: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत, क्योंकि सिर्फ पैथी सिर्फ दवाइयां कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट

0: का मतलब आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूं तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो तो अमुक करो, कोई जरूरत नहीं है। आप रोजाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसम नहीं है, एक जो फल है खाना चाहिए,
0: खाना हो या फल हो ये खाइए। और पानी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए। इससे जब ज्यादा पानी पियोगे, एक एग्जांपल देना चाहूंगी, आपकी खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूंगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊंगी?
1: बहुत प्रेशर पड़ेगा।
0: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
1: ओहो,
0: यस, इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा।
1: तो ये सावधानी बहुत जरूरी है रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार
0: उतना ही।
1: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें है।
0: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
1: जो बड़ी खतरनाक इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला,
0: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए,
1: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए।
0: हाँ, कम कर दीजिए, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
1: कंट्रोल
0: करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा,
1: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
0: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या, मन देता है। मन को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
1: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए,
0: एक अच्छा सा गाना चलते चलते मैं हूँ।

मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुम रो पकड़ घूम बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया झुमरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज में। देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नजदीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है, जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर ये कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। तुम्हें बस तुम्हें साथ लेकर चलना है जीवन की हर राह पर, हर कदम पर, क्योंकि अधूरे हैं तुम्हारे बिना सारे सपने, क्योंकि तुमने रंग भरे हैं जीवन के हर खांचे में। तुम्हारे होने से गीत बन गई है ये जिंदगी, सुर खोले हैं तुमने अपनी मुस्कानों से।

मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन तुम्हारी तरफ। खींचा चला जाता रहा सदियों से, सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का सुकून।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चले जाना।

0: छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये गाना।
1: उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकरा।
0: हम अभी हाजिर हुए।

0: कुमार बोस कला तबला।
1: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
2: श्री बोस's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
0: श्री जनार्दन बापूराव बोथे समाज सेवा।
1: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
2: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
0: Swami Brahmadev Samaj Seva.
1: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
2: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
1: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है। राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए इस संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ
0: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी कला फिल्म अभिनय।
1: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
2: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी।
0: श्रीमती देवकी अम्मा जी समाज सेवा।
1: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती है। 3,000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं।
2: श्रीमती देवकी अम्मा रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस फॉर ग्रोइंग प्लांट सैपलिंग्स एंड यूज्ड मल्चिंग ऑर्गेनिक मैन्योरिंग फ्रॉम होम कैटल, केयरफुल रिटेंशन ऑफ लीफ लिटर एंड थॉटफुल वाटर मैनेजमेंट। She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
0: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole Chikitsa.
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
0: डॉक्टर रामचंद्र
1: सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
2: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
0: Shrimati Sunita Godbole.
1: ये भी कितना गौरव का क्षण है, उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ। आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर

0: पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
1: श्री तेची गुबिन, समाज सेवा।
0: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने बहुत ही कार्य किए वहां पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
2: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान। He also led a team of delegations to meet the Vice President to report
1: on the
2: security.
1: Dr. H. V. Hande, Chikitsa.
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण, जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी की एडीसी उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
2: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
1: Shri
2: B. C. Roy
1: Award. Shri Gafruddin Mevati Jogi Kala Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं, इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं, जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं, और खास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अलीबख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
2: When through his sustained artistic practice, Shri Gafruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research including PhD level studies.
1: Mir Hazi Qasim Kala Dholak.
0: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
2: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस, परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
1: Shri
2: Puraskar.
1: Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध है।
2: ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन पब्लिक परफॉर्मेंसेस हॉल्टेड एंड मेनी आर्टिस्ट फेस्ड हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, श्री खेड़कर स्टूड अप एज अ स्टॉन्च एडवोकेट। He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
0: R. Krishnan Kitna, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन, उनकी पत्नी, पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
2: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज आल्सो
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी।
0: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और खास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
2: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2020।

0: find.
1: He has Professor Mamidala Jagdish Kumar, Sahitya Evam Shiksha.
2: 66 वर्षीय जगदीश कुमार अपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
0: वेल प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार फ्रेम्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर एनईपी 2020 एंड द फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स।
1: श्री प्रवीण कुमार, खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
2: और अब बारी इस 23 वर्षीय खिलाड़ी की। T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर वन हैं और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
0: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रांड प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर, सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
1: श्री के विजय कुमार, सिविल सेवा।
2: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई, श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%। As additional DG law and order, he strengthened public safety.
1: Devba Lad, Dada Lad, Krishi.
2: Devba Lad, किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
0: श्रीरंग देवा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
1: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा।
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड डाइवर्स सब्जेक्ट्स सच एज लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड फिलोसफी।
1: प्रोफेसर डॉक्टर सरोज मंडल, चिकित्सा, कार्डियोलॉजी।
2: 59 वर्षीय डॉक्टर मंडल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
0: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Buddh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
2: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar, Professor Buddh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
0: While working in the archaeological survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 expeditions.
1: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
2: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खासतौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
0: श्री मंडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
1: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
2: लुप्त प्राय जनजातीय आवाजों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाजों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
0: इंटरनेशनली डॉक्टर मिश्र हैज एडवाइज्ड

0: Calls MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University, and Russia's Academy of Sciences.
1: Srimati Tripti Mukherjee, Kala, Kantha Embroidery.
2: Kantha, ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है.
0: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. शी इज ऑल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय कन्फरिंग ऑन हर द बंगश्री अवार्ड.
1: हरि माधव मुखोपाध्याय कला थिएटर, उनके पुत्र श्री कृष्णेंदु मुखोपाध्याय.
2: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे. 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया. उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय.
0: श्री मुखोपाध्याय
1: श्री सत्यनारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग.
2: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं. आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से.
0: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
1: Shri K. Pajanivel Khel Silambam.
2: Silambam 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है. इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल.
0: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also founded the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
1: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
2: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं. आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आप से आकर श्री पंड्या का सम्मान.
0: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
1: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
2: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत. मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया.
0: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
2: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar ke niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है.
0: His work earned him the Vishwa Hindi Samman.
1: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार
2: उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार. गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए. प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप.
0: ओवर अ करियर स्पैनिंग 6 decades, श्री प्रसाद प्रेजेंटेड मोर देन 6,000 कॉन्सर्ट्स अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनली.
1: प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चिकित्सा ट्यूबरकुलोसिस.
2: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खासतौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है.
0: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीड़ी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर. He has worked on 35 research projects.

0: and supervised 185 MD, MS and DM.
1: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
2: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है.
0: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also
1: श्रीमती दीपिका रेड्डी कला नृत्य.
2: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है. शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं.
0: श्रीमती रेड्डी वॉज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर.
1: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी.
2: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी. 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है.
0: वेल, डॉक्टर रेड्डी हैज डिलीवर्ड ओवर 921 सीएमई लेक्चर्स, ऑफर्ड 112 प्लस पब्लिकेशंस एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूमरस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस टू ब्रिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू इंडियन प्रैक्टिशनर्स. His advocacy efforts
1: Shri Haricharan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
2: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. Aur हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हीलचेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है. माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई.
0: श्री हरिचरण सैकिया परफॉर्म सत्रिय डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ऑल्सो ही परफॉर्म द भरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948.
1: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री,
2: 86 साल के शास्त्री जी,
1: साहित्य एवं शिक्षा
2: विद्वानों में से हैं. आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं. नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए.
0: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
1: Professor Shafi Shauk, Sahitya Evam Shiksha.
2: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है. प्रोफेसर शफी शौक.
0: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
1: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
2: Baldev Singh ji ne बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं. एक अनुभवी कोच है और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है.
0: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाग मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी.
1: श्री यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री यमनाम बिशन भोर सिंह.
2: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत.
0: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
2: Ashok ji ne भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में

0: बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का.
1: Dr. Singh has guided 34 PhD and 5 MSc students, making substantial contributions to human resource development and mentoring numerous young professionals.
2: Shrimati Shiv Shankari, Sahitya Evam Shiksha.
0: Abari, Shrimati Shiv Shankari ji ki. आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में खास तौर पर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है. 30 से ज्यादा उपन्यास, 40 से ज्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने.
1: श्रीमती शिवशंकरी कंप्लीटेड हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एज अ यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, रिफ्लेक्टिंग हर अर्ली academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
2: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
0: Sridhar ji, Akashwani ke up mahanidheshak rahe aur vigyan ka एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल.
1: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव का विकास, ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस. He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
2: Professor Shyam Sundar, Chikitsa, Kalazar.
0: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में medicine के मानद professor हैं. संक्रामक रोगों खासतौर पर visceral leishmaniasis, कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है.
1: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लाइशमैनियासिस एंड कालाअजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट. ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM.
2: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा, समाज सेवा.
0: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है. 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई.
1: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
2: श्री एन स्वामीनाथन, कला भक्ति संगीत.
0: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है.
1: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
0: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hai aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke Madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है.
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन. ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 87

0: conferences to share his knowledge. And his profile has been part of international conferences also.
1: Dr. Gopal G. Trivedi, Marnoprant, Vigyan Evam Engineering, Unke Putra Shri Raman Kumar Trivedi.
2: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमण कुमार त्रिवेदी।
0: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज।
1: श्री अरविंद वैद्य कला थिएटर
2: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है। काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
0: श्री वैद्य फाउंडेड द नाट्य संपदा, हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी थ्रू विच ही प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड एंड एक्टेड इन मोर देन 75 फुल लेंथ प्लेज। ईच वर्क कैरीड द क्वाइट वेट ऑफ डेडिकेशन, गैदरिंग रिकॉग्निशन अलोंग द वे। In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
1: Professor
0: very adaptable.
1: Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
2: Professor Juzar Vasi, IIT Bombay mein Professor Emeritus hain. Aur aapne micro electronics aur semiconductor aur solar फोटोवोल्टिक से क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
0: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टेक्स, ही स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च, व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस। ही हैज पब्लिश्ड अबाउट 200 पेपर्स इन लीडिंग जर्नल्स।
1: डॉक्टर नारायण व्यास, पुरातत्व विज्ञान।
2: डॉक्टर नारायण व्यास विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
0: डॉक्टर व्यास वाज एसोसिएटेड विद द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमिटी, डोमेन एक्सपर्ट मेंबर इन नेशनल स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन कमिटी। ही वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर अवार्ड from the government of Madhya Pradesh.
1: Professor Gambhir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
2: Gambhir Singh ji, Darjeeling pahadiyon ke ek pratishthit vanaspati shastri shikshavid paryavaranvid aur sansthan ke nirmatak hain aur khas taur par vanaspati vigyan mein aapne bahut karya kiya hai.
0: Professor Yonzan's contribution to educational and intellectual advancement of Darjeeling Hill region are pioneering and far-reaching. A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a 6-year conservation movement that was a huge, huge success.
1: Shri Halley Warr, Samaj Seva.
2: अब बारी हेली वॉर जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है।
0: श्री वॉर हैज स्पेंट मोर देन 50 इयर्स नर्चरिंग एंड बिल्डिंग द आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ द ईस्ट खासी हिल्स। सिंस द एज ऑफ 10 ही हैज मेटिकुलसली गाइडेड द एरियल रूट्स ऑफ द फिकस इलास्टिका ट्री टू क्रिएट ड्यूरेबल लिविंग स्ट्रक्चर्स। His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
2: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और राष्ट्रपति,
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please, may I have attention, please? I request all the award winners to move towards your right side. Second part of this ceremony.
1: Akashwani se uska aankhon dekha haal bhi sunna na bhule. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और

0: कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार, मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस। नमस्कार।
1: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे।

समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम, और इस समय आप जुड़ गए हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन आकाशवाणी गुना के साथ।

श्रोताओ, सायं के ठीक 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ मीठे और मधुर भक्ति गीत।

श्रोताओं, ये भक्ति गीत आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज में। कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत सुनिएगा हरिहरन के स्वर में।

0: श्रोताओं, आज के सुगम संगीत कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आपका रेडियो दोस्त हरिशंकर शिभरे। कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम ले रहे हैं। विराम के बाद कुछ और मधुर भक्ति रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

श्रोताओं, सृष्टि लक्ष्मी का गाया हुआ अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। आइए अब सुनते हैं लखविंदर सिंह लखा की आवाज में माता रानी का ये बड़ा ही प्यारा भजन।

श्रोताओं, लखबीर सिंह लखा के स्वर में ये माता रानी का भजन आप सुन रहे थे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं कि दूजा कोई द्वार न दिखे। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में महादेव की ये बड़ी ही प्यारी सी आरती।

श्रोताओं, आज के सुगम संगीत को लेकर मैं था आपका रेडियो मित्र हरि शंकर शिवहरि। इस कार्यक्रम को अब हम यहीं संपन्न करते हैं। नमस्ते।

एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं अर्जुन पंडित। इस फिल्म में कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज है, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है दिलीप सेन समीर सेन का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल।
1: समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज का विषय है जैव विविधता, प्रकृति का अमूल्य खजाना, मानव जीवन का आधार। आलेख है रवि अवस्थी का, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

प्रकृति ने पृथ्वी को अनेक प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पर्वतों, नदियों और जंगलों से समृद्ध बनाया है। यही विविधता पृथ्वी पर जीवन को सुंदर, संतुलित और जीवंत बनाती है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैव विविधता एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामान्य शब्दों में जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों, पौधों, सूक्ष्म जीवों तथा उनके पारिस्थितिक तंत्रों की

0: विविधता से है। इसमें जीवों की विभिन्न प्रजातियां, उनके आनुवंशिक गुण, उनके निवास स्थान शामिल होते हैं। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज का आधुनिक युग विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से भले ही अत्यधिक विकसित हो गया हो, लेकिन विकास की इस दौड़ में प्रकृति को गहरे संकट में डाल दिया गया है। मानव की बढ़ती आवश्यकताओं और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण जैव विविधता तेजी से नष्ट हो रही है। वनों की कटाई, प्रदूषण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं अनेक जीवों और वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। जैव विविधता को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है, आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता। आनुवंशिक विविधता का अर्थ एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले आनुवंशिक अंतर से है। उदाहरण के लिए धान, गेहूं या आम की विभिन्न किस्मों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। ये विविधता जीवों की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता प्रदान करती है। जैव विविधता केवल प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। विभिन्न जीव जंतु और वनस्पतियां खाद्य श्रृंखला तथा पारिस्थितिक चक्रों को संतुलित बनाए रखते हैं। यदि किसी एक प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो उसका प्रभाव संपूर्ण पर्यावरण पर पड़ता है। अनेक औषधियां पौधों और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती हैं। आयुर्वेद तथा आधुनिक चिकित्सा दोनों ही जैव संसाधनों पर आधारित हैं। तुलसी, नीम, अश्वगंधा और एलोवेरा जैसे पौधे औषधीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वहीं कृषि, मछली पालन, वानिकी और पर्यटन जैसे अनेक व्यवसाय जैव विविधता पर ही निर्भर हैं। वर्तमान समय में जैव विविधता अनेक खतरों का सामना कर रही है। औद्योगिक विकास, सड़क निर्माण और कृषि विस्तार के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही है। इससे वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। जलवायु और भूमि प्रदूषण ने अनेक जीवों के जीवन को प्रभावित किया है। नदियों में छोड़े जाने वाले रासायनिक अपशिष्ट जलीय जीवों के लिए अत्यंत गंभीर संकट बन चुके हैं। ऐसे में जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वनों की कटाई रोककर अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। पर्यावरण और जैव विविधता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। औद्योगिक अपशिष्टों को नियंत्रित कर स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध है। हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंदरबन और पूर्वोत्तर भारत जैव विविधता के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी इस दिशा में कार्य करने वाली प्रमुख संस्था है। यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात की जाए तो यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों, घने वनों और वन्य जीवों से समृद्ध राज्य है। जैव विविधता की दृष्टि से यह देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में गिना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन, पर्वत, नदियां और वन्य जीव पाए जाते हैं जो इसे जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। राज्य की भौगोलिक विविधता यहाँ के जीव जंतुओं और वनस्पतियों को विशेष पहचान प्रदान करती है। मध्य प्रदेश का लगभग एक तिहाई भाग वनों से आच्छादित है। यूनेस्को ने राज्य के तीन जैव मंडल अभयारण्यों को मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल किया है। इनमें पचमढ़ी, अचानकमार अमरकंटक और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा नेशनल पार्क अपनी जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के कारण देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। निसंदेह जैव विविधता प्रकृति की वह अमूल्य धरोहर है जिस पर संपूर्ण मानव जीवन निर्भर करता है। ये केवल पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का समूह नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता का आधार है। यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि प्रकृति का संरक्षण ही मानव सभ्यता और भविष्य की सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार है। आजकल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। सुनिएगा प्रादेशिक समाचार दर्शन।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली खबर है रायसेन जिले से, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्राचीन बावड़ियों, कुओं और तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है।

0: है। जिले की सभी 520 ग्राम पंचायतों में व्यापक जन जागरूकता गतिविधियों के साथ साथ पारंपरिक जल स्रोतों को साफ और गहरा किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। पेश है रायसेन से हमारे संवाददाता विनीत माहेश्वरी की यह रिपोर्ट।
1: रायसेन जिले में जलगंगा अभियान के तहत प्राचीन बावड़ियों, कुओं और तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य अत्यंत तीव्र गति से जारी है। रायसेन जिले की सभी 520 ग्राम पंचायतों में व्यापक जन जागरूकता गतिविधियों के साथ साथ पारंपरिक जल स्रोतों को साफ और गहरा किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। इसी कड़ी में रायसेन जिला मुख्यालय पर प्रदेश सरकार में मंत्री एवं रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने ऐतिहासिक पूरन तालाब पहुंचकर स्वयं श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण केवल शासकीय दायित्व नहीं है, यह एक पवित्र सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसमें हर वर्ग और हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है, तभी हम अपने जल स्रोतों को जीवित रख पाएंगे। अभियान के अंतर्गत जन अभियान परिषद द्वारा जारी प्रगति रिपोर्ट के आंकड़े इस जन आंदोलन की अभूतपूर्व सफलता की पुष्टि करते हैं। रायसेन जिले ने कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में तय लक्ष्यों को पार कर लिया है। दूसरे चरण के तहत कुआ, बावड़ी और तालाबों की साफ सफाई व गहरीकरण का लक्ष्य 112 निर्धारित था, जिसके मुकाबले 116 स्थलों पर काम करके 100% सफलता हासिल की है। इसके साथ ही नदी तटों के गहरीकरण का कार्य भी लक्ष्य से काफी आगे निकल चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल चेतना जगाने के लिए जन अभियान परिषद द्वारा प्रभात फेरी, कलश यात्रा, जल स्रोत पूजन, जल चौपाल और बड़े पैमाने पर नारा लेखन जैसी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। आंकड़ों के अनुसार जहां नारा लेखन का लक्ष्य 175 था, वहीं ग्रामीणों के उत्साह से 400 से अधिक स्थानों पर दीवार लेखन किया जा चुका है। प्रशासनिक मुस्तैदी और जन भागीदारी के इस सुंदर समन्वय ने रायसेन में जल संरक्षण की एक नई अलग जगाई है। इसके अलावा रायसेन जिले के शहरी क्षेत्रों में भी श्रमदान व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने बताया कि
2: ये कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, मैं कहूँगा पूरे राष्ट्र में चल रहा है, इसकी आवश्यकता भी है। प्रदेश सरकार ने 6 वर्ष भी और इस वर्ष भी इसे अभियान पास में लिया है और गुड़ी पड़वा से लेकर कार्यक्रम शुरू हुआ है और हम 30 जून तक इसको चलाएंगे, जिससे लोगों में जागरूकता है, पानी को बचाना, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी लोगों को पीने का मिले, जमीन के अंदर पानी का संग्रहण हो, हमारे जो तालाब है, बावड़ियां, उसका संग्रहण होगा जल का, तो इससे हमारे बाकी साधन संसाधन भी रिचार्ज होंगे, पानी की उपलब्धता बनी रहे। पानी का लगातार शोषण और दोहन होने के कारण एक जमाने में विद्युतीकरण नहीं था, तो पानी बहुत कम उपयोग कर पाते थे। विद्युतीकरण का हमारे सिंचाई के साधन बढ़े हैं और प्रकार का भी काम हुआ है, हमारे पहले मकान कच्चे होते थे, आज पक्के मकान बने, कई प्रकार के पानी का दुरुपयोग इसमें कर सकते हैं या उपयोग बढ़ा है, इसलिए पानी के एक बूंद बचाना, जल है तो कल है, ये धारणा सबने व्यक्त की है, ये पानी की हर बूंद हमारे जीवन के लिए आवश्यक है।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी।
0: हमारी दूसरी खबर है सतना जिले से। यहां खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान चलाया जा रहा है। यह कृषि रथ जिले के प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत निर्धारित सभी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को जागरूक कर रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सतना से हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी।
3: सतना और मैहर जिले में किसानों के कल्याण के लिए कृषि और संबंधित विभागों के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए 16 मई को 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ विकास खंड पंचायत प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों, किसानों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह कृषि रथ के माध्यम से जिले के प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत निर्धारित सभी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को ई टोकन, उर्वरक वितरण, संतुलित उर्वरक, जैविक और प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कीट और रोग प्रबंधन, फसल विविधीकरण, कृषि यांत्रिकीकरण, पराली प्रबंधन, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपायों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही कृषि अभियांत्रिकी के माध्यम से खेत समतलीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है नरसिंहपुर जिले से। जिले में सिंगरी नदी के उत्थान और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नदी के उद्गम स्थल से लेकर जहां जहां से नदी बह रही है, सभी रास्तों पर ठोस और तरल कचरे के निपटान के इंतजाम किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर संवाददाता आशीष जैन।
4: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में नदियों को संरक्षित करने के लिए एक अनूठी पहल का आयोजन किया जा रहा है। नरसिंहपुर शहर में बहने वाली सिंगरी नदी के अस्तित्व को बचाने और उसके

0: संवर्धन के लिए सिंगरी के उद्गम स्थल से लेकर उसके शहर में होते हुए आगे जाने के सभी रास्तों को बेहतर दिशा देने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते सिंगरी नदी जिन जिन गांवों से होकर गुजरती है वहां ठोस और तरल प्रकार के कचरे के प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर जिले के अपर कलेक्टर गजेंद्र नागेश।
1: इस वर्ष हम लोगों ने जो काम शुरू किया है वो मगरधा, रोसरा और नकटुआ, इसके साथ ही खमतरा और रानी पिपरिया, इनमें हमने इस चुनौती को और इस समस्या को पहचान कर कि वास्तव में नदी के लिए तकलीफ क्या है, क्या उसका कम होता हुआ पानी, क्या बहुत सारी गाद मिट्टी का इधर उधर भर जाना, क्या उसके तटबंधों का नुकसान हो जाना, या उससे भी ज्यादा बात ठोस और तरल अपशिष्ट जो स्थानीय निवासियों द्वारा वेस्टित किया जाता है। तो हमारा आकलन इसमें यह है कि इन सारी समस्याओं को हम कैसे एड्रेस करें। हमने लगभग 5 किलोमीटर के परिक्षेत्र में और उसमें भी स्पेसिफिकली लगभग 650 मीटर की परिक्षेत्र में, जिसको हम मगरधा, नकटुआ, रोसरा का संगम बोलते हैं, वहां पे हमने नदी का कोर्स करेक्शन किया है। नदी की गहराई के साथ साथ चौड़ाई भी लगभग ऑन एवरेज हमने 20 मीटर के आसपास किया। वैसा करिए जैसा नदी अपने पारिस्थितिकी तंत्र में स्वयं करती है या करना चाहती है, उसको हमने वैसा किया। दूसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने कही है कि हम उसका सौंदर्यीकरण, उसको प्लेस मेकिंग की एक्टिविटी के रूप में कर रहे हैं, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कर रहे हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हम उन बसाहटों का तरल अपशिष्ट को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहां से वो नदी में मिलता है, और नदी का जो जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र बिगाड़ता है, वहां के जो पादप होते हैं, पौधे हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो जलों का लगातार शुद्धिकरण करते हैं, उनको फिर से कैसे एक्वेटिक लाइफ शुरू हो पाए, यह हमारी धारणा है। हमने 6 जगहों पर ऐसे ग्रे वाटर ट्रीटमेंट इकाइयां स्थापित करना शुरू किया है और उसके माध्यम से परिकल्पना ये है कि इन लगभग 850 घरों का जो पानी नदी में आता है, मगरधा, रोसरा और नकटुआ जहां से शुरू होता है, शहरी सीमा शुरू होती है, तो उनको हम कम से कम ट्रीट करके, एक सेमी ट्रीट करके भी हम सिंगरी नदी में छोड़ेंगे। और उसके वजह से हम ये मानते हैं कि सिंगरी नदी के पुनर्जीवन के कार्य को एक स्थायी आधार मिल सकेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इन सभी गांवों में फोकस करके ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की रणनीति बनाई है, क्योंकि बिना इसके प्रबंधन के हम नदी के संवरण, नदी के सौंदर्य वृद्धि के जैसे कोई भी काम जो करेंगे तो वो कॉस्मेटिक चेंज जैसे होंगे, स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकेंगे। अभी हम लोगों ने नदी में व्यापक स्तर पर पिचिंग का कार्य करना शुरू किया है और उसके साथ ही साथ कुछ इस तरीके का जिसके माध्यम से हम समाज को और स्थानीय निवासियों को नदी के किनारे ला सकें और वो उसके सौंदर्य का भी जो है वो लाभ ले सकें।
0: नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन।
2: हमारी अगली खबर है पन्ना जिले से, जहां मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत द्वारका सोमनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए 151 तीर्थयात्रियों और सहायकों का चयन किया गया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पन्ना से हमारे संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा।
3: बुंदेलखंड का मिनी वृंदावन कहे जाने वाले पन्ना से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों का जत्था आगामी 27 मई को द्वारका सोमनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पन्ना जिले से कुल 191 तीर्थ यात्रियों और उनके सहायकों का चयन किया गया है। पन्ना की संवेदनशील कलेक्टर उषा परमार द्वारा श्रद्धालुओं के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने हेतु 20 मई को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऑनलाइन रैंडमाइजेशन प्रक्रिया संपादित की गई। इस दौरान उपस्थित जनों के प्रश्नों का समाधान भी जिला प्रशासन द्वारा किया गया और संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। आगामी 27 मई से 2 जून तक की अवधि की तीर्थ यात्रा के संबंध में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी धर्मस्व शाखा अनिल कुमार तलैया ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देश के परिपालन में तीर्थयात्रियों के आवेदन पत्र तहसीलदार द्वारा पोर्टल में दर्ज कराए गए। इसके अलावा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की गई और नवीन तीर्थयात्री एवं उनके सहायक ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकें, इसका विशेष ध्यान रखा गया। उन्होंने बताया कि पन्ना जिले से इस यात्रा के लिए कुल 551 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें शासन द्वारा आवंटित बर्थ अनुसार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न रेंडमाइजेशन प्रक्रिया से तीर्थयात्रियों का चयन हुआ। तीर्थयात्रियों का जत्था आगामी 27 मई को जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पन्ना से खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगा, जहां से वह द्वारका सोमनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुख करते हैं रीवा जिले की तरफ, जहां किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। अब तक 31,000 से अधिक किसानों से 1,50,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। गेहूं उपार्जन के लिए अब तक 35,213 किसानों ने स्लॉट बुक किए हैं। पेश है रीवा से हमारी संवाददाता आरती।

0: श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट।
1: किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है। अब तक 31,000 से अधिक किसानों से 1,50,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। गेहूं उपार्जन के लिए अब तक 35,213 किसानों ने स्लॉट बुक किए हैं। उपार्जित गेहूं में से 1,11,000

0: किए हैं। उपार्जित गेहूं में से 1,11,473 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन कराकर सुरक्षित भंडारण करा दिया गया है। किसानों के खाते में अब तक 213 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों से 28 मई तक गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी भी इन दिनों विभिन्न खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों से व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। कलेक्टर द्वारा खरीदी केंद्रों में अपने समक्ष गेहूं की बोरी का तौल भी कराया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव।
1: हमारी अगली खबर है राजगढ़ से, जहां कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की पहल पर शुरू हुआ संवाद से समाधान कार्यक्रम। जिले में जन समस्याओं के समाधान का त्वरित माध्यम बनता जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं राजगढ़ से हमारे संवाददाता कमल बाबू खस।
2: राजगढ़ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अभिनव पहल संवाद से समाधान कार्यक्रम जिले में जन समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आम जन की शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किए जाने से नागरिकों में कार्यक्रम के प्रति विशेष लगाव एवं विशेष विश्वास देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम की खास बात यह है कि कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा स्वयं प्रत्येक शिकायतकर्ता से 1-to-1 चर्चा कर संबंधित विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में समस्या का समाधान सुनिश्चित करते हैं। मौके पर ही निराकरण होने से शिकायतकर्ताओं में प्रशासन के प्रति विश्वास का भाव मजबूत हो रहा है और इस पहल को अपनी समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम मानने लगे हैं। राजगढ़ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हितग्राहियों की जो समस्या है वो सर्वोपरि है, उनका निराकरण सर्वोपरि है। इसी के तारतम्य में हम लोगों ने नए प्रारूप में जन सुनवाई कक्ष का निर्माण कराया। ऑनलाइन VC के माध्यम से सभी खंड स्तरीय अधिकारी जन सुनवाई से जुड़ते हैं, आवेदकों को की समस्याओं को सुनते हैं हम लोग, त्वरित निराकरण करते हैं। इसके साथ साथ TL समाधान में हम लोग हर सोमवार को 5 ऐसी हितग्राही मूलक शिकायतें जिनका निराकरण लंबे समय से नहीं हुआ है उनको हम लोग लेते हैं। शुक्रवार को इन शिकायतों को संबंधित विभाग को फॉरवर्ड किया जाता है और उसका समाधान हम लोग अगले TL में सुनिश्चित कराते हैं। राजगढ़ जिले में जन सुनवाई और हितग्राहियों की समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने संवाद से समाधान कार्यक्रम स्टार्ट किया। ये मंगलवार को हम लोग 5 ऐसी शिकायतें जो हितग्राही मूलक है विभागों को 3 या 4 दिन पहले हम लोग अग्रेषित करते हैं, उन शिकायतों पे निराकरण विभागों से अपेक्षा की जाती है। साथ ही साथ प्रॉपर जवाब अब इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर जवाब अपडेट करने की कार्रवाई विभागों द्वारा सुनिश्चित की जाती है।
2: समाचार दर्शन के लिए राजगढ़ से कमल खस।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावधानी डॉ आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉ कलीपट्टी रामासामी पाईस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव,

0: कुमार बोस शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में और तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में हैं।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इनमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। लीजिए एक नजर डाल लेते हैं आज के शीर्ष और कल आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। पहले इस सभा के शीर्ष कार्यक्रम 7:21 पर ग्राम सभा में सुनिएगा लोकरंग और कुछ बातचीत। 8:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:15 पर। 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम होगा जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवाएंगे। 10:00 आपकी फरमाइश और 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित राम स्वरूप रतोनिया का ताल झप ताल में तबला वादन आप सुन सकेंगे। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम। लीजिए अब एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित कार्यक्रमों पर। सुबह

बजकर 20 मिनट पर आकाशवाणी भोपाल से सुनिएगा नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा सुरमई सवेरा। 9:15 पर सुरमई सवेरा का समय रहेगा 8:30 पर। 9:15 पर सुगम संगीत में राधिका चोपड़ा की गायी गजलें आपको सुनवाई जाएंगी। सुबह 9:30 शब्द सागर में वरिष्ठ कवि प्रयाग शुक्ल से शुभम तिवारी की बातचीत आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम होगा शब्द सागर। सुबह 10:05 पर फिल्म संगीत का विशेष और लोकप्रिय कार्यक्रम सुनिएगा गीत सागर। 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेचा का राग भैरव में ध्रुपद गायन युगल आप सुन सकेंगे। सुबह 11:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12:00 आपकी फरमाइश। 12:30 संग्रहालय से मैं पंचतंत्र का भाग 13 आपको सुनवाया जाएगा। 1:00 महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होंगी। 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 आपकी फरमाइश आप सुन सकेंगे। कल शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी। इसे आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें फिल्म संगीत और कुछ विशेष चर्चाएं होंगी। कल शाम की सभा में फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 5:33 पर 6:30 8:15 और 10:00। शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। कल 7:21 पर शाम को सुनिएगा ग्राम सभा। इसमें सुनिएगा डॉक्टर अनुराग पटेल से ली गई भेंट वार्ता, किसानों के लिए लाभकारी कस्टम हायरिंग और साथ ही बुंदेली समाचार। 8:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा सुर्खियों में। 9:30 उर्दू कार्यक्रम होगा कहकशा। इसमें आप सुनेंगे महफिले समा कव्वालियों पर केंद्रित ये कार्यक्रम होगा। और कल रात्र 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेजा का युगल ध्रुपद गायन राग यमन में आप सुनेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
3: असली नोट से क्यों खेल रहा है
1: ब्रो? ये फटा है। सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
7: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।

0: कहता है स्मार्ट बनो,
1: कूल रहो।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। धार में बनेगा सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। प्रदेश में जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर मनाया गया गंगा दशहरा। और नौतपे के पहले दिन मिला जुला रहा मौसम, भोपाल, विदिशा, सीहोर सहित कई जिलों में रही भीषण गर्मी, उमरिया में बारिश से गिरा पारा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत धार जिले में आयोजित गंगा दशहरा कार्यक्रम में सहभागिता कर जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार पुरातत्व और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके लिए उन्होंने यहां सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान बनाने का ऐलान किया। उन्होंने भोजशाला आंदोलन में शहीद हुए 3 बलिदानियों लक्ष्मण सिंह पंचघाटी, बन सिंह अमझेरा अंतर सिंह और अंतर सिंह के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
3: तो माँ वाघ देवी की कृपा से हमने उनके दर्शन करके धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसलिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर।
2: कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ऐतिहासिक देवी सागर तालाब के गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया और श्रमदान कर जल एवं जल संरचनाओं के संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में जल संरक्षण के व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा के अवसर पर आज सभी जिलों में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कुओं, नहरों, बावड़ियों और तालाबों की साफ सफाई, घाटों की स्वच्छता और पुराने बंद पड़े बोरवेल के पास रिचार्ज पिट का निर्माण कर जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर लोगों को प्रेरित किया। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण एवं सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। सीहोर के रेहटी स्थित नर्मदा के आंवली घाट पर जिला स्तरीय संरक्षण कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं नीमच, कटनी, खंडवा, खरगोन, अशोकनगर, छतरपुर, सतना, ग्वालियर, श्योपुर और रायसेन में भी जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
2: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और

0: आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी पुस्तक अपनापन का विमोचन कल किया जाएगा। इस पुस्तक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के संबंधों और अनुभवों को साझा किया है। इसका विमोचन कल नई दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा करेंगे।
1: ये पुस्तक केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, वो सोच है जिसने भारत को बदल दिया। 26 मई को इस पुस्तक का लोकार्पण श्रीमान वेंकैया नायडू जी, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और आदरणीय देवगौड़ा जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, ये सुब्रमण्यम हाल पूसा में करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड विभिन्न नवाचारों से देश में सबसे आगे है। प्रदेश में वक्फ बोर्ड के माध्यम से वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन की गई हैं, जिसके लिए भारत सरकार से स्कॉच अवार्ड भी मिला है। ये पारदर्शी व्यवस्था पूरे देश के लिए उदाहरण बनी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड देश का श्रेष्ठ वक्फ बोर्ड है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज भोपाल के रविन्द्र भवन राज्य वक्फ बोर्ड के स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 850 बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। अब रुख करते हैं मौसम का। आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। यह सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है और गर्मी अपने चरम पर होती है। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया कि नौतपा की शुरुआत के पहले ही दिन नर्मदापुरम में असर देखने को मिला। यहां सुबह से ही तेज और तीखी धूप रही। भोपाल, विदिशा और सीहोर में भी गर्मी से लोग परेशान दिखे। उधर उमरिया जिले में नौतपा की शुरुआत मौसम के बदले मिजाज से हुई। नौतपा के पहले ही दिन जिले में गलत चमक के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। अब समाचार संक्षेप में। शहडोल संभाग के शहडोल और उमरिया जिलों में 40 करोड़ की लागत से 3 डिग्री कॉलेज भवनों का निर्माण किया जाएगा। कटनी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विविध जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खरगोन के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रस्तावित नवीन भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने किया। जिला जेल अशोकनगर में आज बंदियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज श्योपुर में श्योपुर जिला स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैतूल में आज लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अधिकारियों और विभागीय निर्माण अधिकारियों को कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन ऐप के जरिए चली गिद्धों की गिनती पूरी हो गई है। 3 दिन की गिनती में 315 गिद्ध पाए गए। गुना में कलेक्टर ने आज जनगणना कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अधिकारियों का सम्मान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। धार में बनेगा सरस्वती लोग और भोज लोक संस्थान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। प्रदेश में जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर मना गंगा दशहरा। और नौतपे के पहले दिन मिला जुला रहा मौसम। भोपाल, विदिशा, सीहोर सहित कई जिलों में रही भीषण गर्मी। उमरिया में बारिश से गिरा पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुने बारे सबै सबै सबै किसान भाइयों को मनोज भैया की दो हाथ जोड़े की राम राम पहुंच जाए। भैया आज बड़े विशेष दिन हैं, एक तो आज गंगा दशहरा है, गंगा मैया आज धरती पे पधारी थी,

उनके आवे से जब धरती हरी भरी हो गई थी, और गंगा जब धरती पे आई तो फिर कहते ना कि आध्यात्म को एक पुनर्जागरण से होगा। गंगा आज भारत में सबसे पूजनीय नदियों में से है, आज गंगा दशहरा है, आप सबके लाने गंगा दशहरा की खूब सारी शुभकामनाएं। दूसरी बात भैया, आज से नौतपा शुरू हो गए हैं और अगर दो जेठ को महीना ना होते, एक महीना जो कहते ना कि पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है, तो अब दूसरो महीना भी जेठ को शुरू हो गया है। और जेठ का महीना कहते ना कि पांव में ततूरी लगे चटक परो घाम, जेठ की दुपरिया जा अरे मोरे राम। ऐसी गर्मी पड़ रही है, ऐसी गर्मी में हम किसानों के लाने बहुत सारी बातों को ध्यान रखने हैं। तो आज से नौतपा शुरू हो गए हैं, अपने लाने गर्मी से बचाव भी करने हैं, और संगे संगे हमें खेती किसानी के कामों के लाने शुरू करने हैं। ढेर सारी ऐसी बातें हैं आज हम आपसे करबो चाह रहे हैं। पहली चीज तो जा है भैया कि सोयाबीन के बीज के लाने आप तैयार हो जा, सोयाबीन की उच्च गुणवत्ता के अच्छे जो आपके क्षेत्र के लाने अनुशंसित हैं उन बीजों की व्यवस्था लेके कर लो। कहके कि सोयाबीन के भाव जय टैम पे आसमान छू रहे हैं, और धान की नर्सरी डारवे को भी टैम शुरू हो गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि 25 मई से 10 जून तक धान की नर्सरी डाली जा सकत है। बात भैया किसानों के संगठन की करें, किसान अगर कहते ना कि एक से भले दो, दो से भले चार, तो आजकल किसानों को एक संगठन है जिसको नाम है FPO, कृषक उत्पादक संगठन। संगठन में शक्ति है और वह शक्ति को उपयोग किसान FPO बना के कर सकते हैं। जा विषय में भी आज हम आपके लाने बते हैं कि FPO के का उद्देश्य है और FPO के लाभ का है, FPO कैसे बनाव जा सकत है, जब विषय में भी हम आपसे चर्चा करवो चाहेंगे। साथ ही आज विश्व थायराइड दिवस भी है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो हमारे भीतर एक हार्मोन बनाते है, जो अगर आपके शरीर में बढ़ जाए तो भी दिक्कत है, घट जाए तो भी दिक्कत है, तो बाकी लाने कैसे आप संतुलित बना के रखें, बाबात को भी ध्यान रखें। और भी बातें हम आज के कार्यक्रम में आपसे करें, मनो जा हम आपसे जरूर कहबो चाहेंगे कि आप हमेशा जा बात को ध्यान रखो कि कहते ना कि जान है तो जहान है। हम अपने तन को जब तक स्वस्थ रखेंगे हम सुखी रह पाएंगे। कितनी धन संपदा घर में रखी हो, अगर आप बीमार हो तो फिर बस धन संपदा आपके कोनो काम की नहीं है। यही मारे कही गई है कि प्रथम सुख निरोगी काया, और हमें अपनी काया को स्वस्थ रखने के लाने थायराइड से बचने हैं। थायराइड की अधिकता और बाकी कमी दो चीजें आपके लाने नुकसान देते हैं, तो बाको ध्यान रखें। और नौतपा लगे हैं तो लू लपट से भी हमें बचने की जरूरत है। जा टाइम पे जबरदस्त तरीके से गर्मी पड़ रही है और हमें गर्मी से बचाव के लाने हमेशा उपाय अपनावो चाहिए। घर से निकलो तो गमछा मूड़ से बांध के चलो, एक प्याज की गठिया बूढ़े सियाने कहते हैं कि जेब में डार के चलो, ठंडो पानी पियो, मठा पियो, पुदीना को पानी पियो, आम को पना पियो, तो जैसे आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी। ये सब बातों को ध्यान भी रखने हैं। फिलहाल अब टाइम हो गया है बुंदेली समाचारों को, फिर बात करेंगे आगे की। बुंदेली समाचारों के साथ मैं मनोज सक्सेना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत धार जिले में आयोजित गंगा दशहरा कार्यक्रम में सहभागिता कर विशाल जनसभा को संबोधित करो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभिन्न योजनाओं की हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करे। मुख्यमंत्री ने जहां सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान को ऐलान करो, उनने भोजशाला आंदोलन में शहीद भये तीन बलिदानियों लक्ष्मण सिंह पंचघाटी, बन सिंह अमझुरा, अंतर सिंह के परिजनों को 5-5 लाख रुपया की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी करी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने धार जिले के ऐतिहासिक देवी सागर तालाब के गहरीकरण काम को शुभारंभ करो तथा श्रमदान करके जल एवं जल संरचनाओं के संरक्षण को संदेश दो। इससे पहले मुख्यमंत्री ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे जहां उनने मां बाग देवी

0: के दर्शन और पूजन करें। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बेर बेर हो रही चूक पर चिंता जतात भय कही है कि जब बड़ी दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं लव है। न्यायाधीश पी एस नरसिम्हा और आलोक आराधे ने पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगो है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करवे के लाने जांच एजेंसी की जगह कोई ज्यादा मजबूत और सशक्त संस्था के लाने मांग करी गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा जमा करवे के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कही है कि आज मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड विभिन्न नवाचारों से देश में सबसे आगे है। प्रदेश में वक्फ बोर्ड के माध्यम से वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन करी गई हैं, जे के लाने भारत सरकार ने स्क्रैच अवार्ड मिलो है, जो पारदर्शी व्यवस्था पूरे देश के लाने उदाहरण बनी है। उनने कही कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड देश को सर्वश्रेष्ठ वक्फ बोर्ड है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल के रविन्द्र भवन राज्य वक्फ बोर्ड के स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 850 बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित करी गई। डॉ यादव ने छात्रवृत्ति पाए वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कही कि हजारों विद्यार्थियों को इस योजना को लाभ मिलेगा। उन्होंने कही कि छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करने को एक माध्यम है। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2026-27 के लाने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून तक बोर्ड की आधारित वेबसाइट mpkhadigramodyog.com पर जाके आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में सामान्य रूप से 30 प्रशिक्षणार्थियों को चयन करो जाएगा, जिनमें 30% महिलाएं प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आज गंगा दशहरा है। ये विशेष दिन जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नीमच में हाथी मंदिर घाट पर साफ सफाई करके श्रमदान करोगो। अशोक नगर के तुलसी सरोवर तालाब में श्रमदान करोगो। वहीं छतरपुर के विंध्यवासिनी तलैया पर मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक ललिता यादव ने श्रमदान करो। सतना के ग्राम बेला स्थित तालाब में विशेष कार्यक्रम को आयोजन करोगो। ग्वालियर में ऐतिहासिक मेहराब साहब की तलैया पे सांसद भरत सिंह कुशवाहा की अगुवाई में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सामूहिक श्रमदान करोगो। रायसेन के चोपड़ा तालाब की सफाई अभियान में विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी शामिल भये। मौसम। प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गए हैं, जो सिलसिला 2 जून तक जारी रहेगा। नौतपा यानी साल के वे 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा रहे थे और गर्मी अपने चरम पर रहे थे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में 44 जिलों में लू चलवे की चेतावनी जारी करी थी। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इमारे इन 5 जिलों में रेड अलर्ट घोषित करो गए है। कल यानी रविवार को खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म रहो, जहां पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गयो। राजधानी भोपाल में 42.7 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 44.1 डिग्री और जबलपुर में 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो। मौसम विभाग ने कही है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक जई उम्मीद है। जे थे आज के बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: भैया, बुंदेली समाचारों के बाद अब बारी है लोक रंग कार्यक्रम की। और लोक रंग कार्यक्रम जेमे के हम आपकी पसंद के बुंदेली गीत आपको सुनवाते हैं। तो आगे की हम बहुत सारी बातें जो है बीच में करत रहें, मनो एक बढ़िया सो गीत जो आपने पसंद करो तो वो हम आपको सबसे पहले सुनवाए दे रहे हैं। और जो गीत गाव है संतोष तंतवाय ने, कैसे के भैया गर्मी जेट की पड़ रही है, तपा लग चुके हैं और ऐसे में पीपल की छांव हम सबके लाने सुकून देते हैं। और जो गीत भी आपके लाने निश्चित रूप से सुकून देगो। आप जाए मन से सुनो आपके

लाने लेके आए हैं जो गीत हम और जाके लाने पसंद करोगो है। हमारे जो नियमित श्रोता हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा ने।

0: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या बात है भैया, पीपर की छैया में बैठो मोरी गुइया, चैन ले लियो दोपहरिया में, काम लगो राने उमरिया में। बात बिल्कुल सही है, ऐसी गर्मी में हमें थोड़ो थोड़ो आराम करवो चाहिए, और पीपल की बढ़िया की छांव जा टाइम पे जो सुख दे रही है, बे का जाने जो पेड़ काटत हैं। पेड़ लगावो ई मारे तो जरूरी है भैया, कि हम अगर पेड़ रखेंगे तो मौसम सुधरो रहे, पर्यावरण जो है अच्छो रहे, ठंडक रहे। आगे बढ़ते हैं, एक और गीत है जो पसंद करो है, शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने। फरमाइश है दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव की। इनकी पसंद को जो गीत है, श्रृंगार को गीत है, एक बिलवारी है, और राजेंद्र सिंह यादव और साथियों के सुरों में गाई गई है, सुनते हैं।

0: गोला।
1: भैया अबे जो गीत अपन सुन रहे थे, तोरी गोला गोला गुइया, तोरी गोला गोला मुइया, गोरे गाल छबीली, ऐसो लगत देखत रहिए, श्रृंगार से भरो भो जो गीत थो। और अगलो गीत भी हम आपको श्रृंगार से जोड़ो सुनवा रहे हैं, और बात गोला मुइया की है। तो गोला मुइया को लोग बड़े उपमाए देते हैं, कोई ओखो चंदा कहत है, कोई चकोर कहत है, और बेसब भाव जब गीत में समा जाते हैं और संगीतबद्ध हो जाते हैं और सुरीले कंठ से वे गा दे जाएं तो मन खुश हो जाते हैं। जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बसंत कटारे और साथियों के सुरों में, इखो पसंद करो है अमलताश अमरीन होम्स कटार हिल्स भोपाल से, योगेश्वर सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, प्रेम बाई भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय, अमिता भारतीय, श्रीमती ललिताबाई भारतीय। जय गीत की फरमाइश है न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बाबड़िया कला भोपाल से डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, डॉक्टर गीता श्यामनानी, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय। संगे संगे ग्राम व पोस्ट बाया तहसील रहटी जिला सीहोर मध्य प्रदेश से अमर सिंह भारतीय, महेंद्र भारतीय, सचिन भारतीय और कोशाबाई भारतीय की तरफ से जो गीत की मांग है, हालांकि इनने एक गीत और पसंद करो थो, तो हम उनसे जो कहवो चाह रहे हैं कि आपने जो गीत पसंद करो है हम वो अगले कार्यक्रम में जरूर सुनवे हैं, कैसे के वो हमें अभी तक मिल नहीं पाओ है, तो आपकी फरमाइश को जो गीत भी आप सुनो आनंद लो।

गजब के गुदना गुदाए गोरी कांते। गुदना मतलब आज की भाषा में कहें तो टैटू। और श्रृंगार को जय एक अलग व्यधा है। टैटू आपके लाने बहुत कछु बता देते हैं। टैटू में बहुत सारी सांकेतिक भाषाएं होते हैं और बाकी एक अपनी पहचान होते है, बाकी एक समझ होते है। पर टैटू तो टैटू है। टैटू गाल पे बन जाए तो मुखड़े की सुंदरता बढ़ जाती है, हाथों पे लग जाए तो हाथों की सुंदरता बढ़ जाए। जब सब सुंदरता के लाने टैटू बहुत मायने रखा थे और ऐसी मेहंदी होते भैया। हमने जो गीत आपको पहले बताई थी कि बसंत कटारे ने गाओ है, जो गीत गाओ थो डॉक्टर अरविंद सोनी ने। अगलो गीत हम आपको सुनवाए देते हैं बसंत कटारे को, जे की हम बात कर रहे थे कि चंदा जैसी गोला गोल मुनैया, जा चंदा जैसे मुखड़ा की बात जा गीत में करी गई है और जा लैंद है गाई है बसंत कटारे और साथियों ने, और एको पसंद करो है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने सुना है।

तोरी चंदा सीजा गोला गोल मुनैया देखत नेंदिया ले गई। भैया श्रृंगार की बात करी जाए, श्रृंगार में हमने टैटू की बात कर ली, मतलब के गुदना की बात कर ली, झुमका की बात कर ली है, करधनी की बात हो गई है, श्रृंगार में बिंदिया की बात हो गई है, चूड़ी की बात हो गई है, अब पांव की पेजनिया बची है। तो एक गीत हम आपको श्रृंगार कोई सुनवा रहे हैं, कहरवा है, पांव की पेजनिया की बात करी गई है, और जामे बात करी गई है बोरा की। बोरा पांव की पायल में जो कुलाबे में लगे तीन घुंघरू होते हैं उनको बोरा कहते हैं, और जब वे बजत हैं तो का कवि कह उठते और का संगीत नकर उठते, जब गीत से आप समझ पे हो। हरचरण सिंह नरवरिया और साथियों के सुरों में जो गीत है पसंद है, छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्रेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाबेंद्र कुमार वर्मा सुनाते हैं।

0: भैया बोरा बजना रे गोरी पायल ने झनकारो हरचरण सिंह नरवरिया और साथियों के स्वरों में अपन ने जो गीत सुनो जो थो आज को लोक रंग कार्यक्रम। आप भी अपने पसंद के गीत सुनवा चाह रहे हैं तो चिट्ठिया लिख देवे, हमारा पतो है ग्राम सभा कार्यक्रम लोक रंग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल पिन 462002। और अपनी पसंद को गीत आप लिख के हमें भेज दो और अगर हमें कोशिश करते हैं कि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो हम ढूंढ के आपके लाने सुनवावे की कोशिश करें आगे के कार्यक्रमों में। भैया एक बात हम चला चला तो आपसे कह देवे कि अब जो जा टेम पे मौसम आ गयो है, जो मौसम है कि आप अपनी सोयाबीन की उन्नत किस्मों को तलाश शुरू कर दो, आप जो भी बोन चाह रहे हैं वह बीज के लाने आप ले वो संग्रह करवो शुरू कर दो, कैसे के बीज एन मौका पे खरीदवे में बड़ी भागम भाग हो जाते और बीज अच्छो भी नहीं मिल पाए, कई बेर बीज जब लेवे जाओ तो बीज महंगो मिलत है, तो जा बात को ध्यान रखने हैं और आपके क्षेत्र की किस्मों के हिसाब से आप चुनाव करो। जैसे जीएस 24-33-95 दिन की किस्म है, 8-12 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार है। ऐसे ही एक और है ब्लैक बेल्ट, 95 दिन की फसल है जा, नई किस्म है, 8-12 क्विंटल की उपज है जा की प्रति एकड़। ऐसी कछु किस्में हैं जिनके लाने आप चुन सकते हैं। कार्यक्रम को अभाव है, टाइम कम है, तो हम अगले कार्यक्रम में आपको जाके बारे में जरूर बते हैं। फिलहाल अब हमें चलवे की आज्ञा दो, स्वीकार करो मनोज भैया की दो हाथ जोड़े की राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा, इसे हम आकाशवाणी भोपाल से आपको सुनवा रहे थे। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा, भारत अमरीका संबंधों को नई मजबूती पर। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती। पिनाक जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: पिनाक जी एक बेहद अहम दौरा है अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत में और भारत अमरीकी संबंधों को नई मजबूती देने पर बेहद जोर दिया जा रहा है। आइए इस महत्वपूर्ण चर्चा को आरंभ करने से पहले भारतीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर के शब्द सुने।
4: I think where the United States is concerned, the Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. So both of us are obviously driven by our respective national interests. There will be many areas where our national interests are in harmony and we work together, which is why we have a strategic partnership.
2: पिनाक जी, एस जयशंकर जी ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट की तरह ही भारत इंडिया फर्स्ट के बारे में सोचता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बहुत साफ कर दिया है कि अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीति है वो सर्वोपरि है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
3: देखिए, हर एक देश अपनी जो इंटरेस्ट है उसको सबसे नेचुरली प्रायोरिटी देती है। अब उसमें ऐसा होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कभी, अच्छा ठीक है आप ये करिए तो हम ये करेंगे। पर जो ट्रंप साहब ने नीति अपनाई है वो थोड़ा सा और पिछले प्रेसिडेंटों से थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि वो उस पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं।

0: हैं कि अमेरिका को क्या फायदा है वो सबसे पहले वो देख रहे हैं। भारत भी हमेशा देखता है कि भारत का क्या फायदा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत है, काफी गहराई है, पर हमारे डिफरेंसेस भी हैं क्योंकि ज्योग्राफिकल है, पावर इक्वेशन जो होता है वो अलग अलग है, लोग डिफरेंट हैं, उनकी सिस्टम अलग है, वो डिफरेंट पीपल हैं, तो इसमें तो होता ही है, डिफरेंसेस तो होंगे ही, ये नॉर्मल होता है। तो इसीलिए हम लोग बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं, उसमें से जब कुछ मुद्दा निकलता है, इस पे दोनों तरफ राजी होते हैं, तब आगे बढ़ती है बात।
1: जी पिनाक जी, आइए सुनते हैं अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के शब्द।
2: एंड वन ऑफ दोज रिलेशनशिप्स दैट आई एम सो एक्साइटेड अबाउट गोइंग इनटू द 21st सेंचुरी गिवन द चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस न्यू एरा इज इंडिया। इट्स वन ऑफ दोज कंट्रीज दैट आई नो दैट वी हैव दिस वेरी वैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एंड वी शेयर सो मेनी वैल्यूज एंड सो मेनी कॉमन इंटरेस्ट्स। एंड सो ऑब्वियसली आई ट्राई टू गेट अराउंड द वर्ल्ड, आई विल ट्राई टू गो टू अदर सेलिब्रेशंस ऑफ आवर 250th बर्थडे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्दो आई डाउट एनी विल हैव अ प्रोडक्शन लाइक दिस वन, बट I want you to know that part of my visit here is also to reinforce how important this relationship is, how exciting it is, and how many opportunities we have to do things together. If I think about all of the key issues and all of the key opportunities of the modern economy, India and the United States together are perfectly positioned to work together on these issues to achieve a better life for the people of the United States, for the people of India, and frankly, for the people of other countries working together as well.
1: पिनाक जी, मार्को रूबियो ने कहा कि न सिर्फ अमेरिका और भारत के लोगों के लिए बल्कि विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी में रहने वाले लोगों के लिए भी भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो उन सब के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी पार्टनरशिप्स अमेरिका की हैं उनमें भारत की पार्टनरशिप को अमेरिका बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है और समझता है कि 21वीं सदी में आगे बढ़ते वक्त भारत अमेरिका के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहेंगे इस पर?
0: स्टेटमेंट में तो काफी चीजें उन्होंने कही जो अच्छी हैं, पर इसका जो नतीजा अगर असली निकालना है तो वो नेगोशिएशन से ही निकलेगा। जैसे हमारे ट्रेड नेगोशिएशन अभी चल रहे हैं तो उसका क्या होगा, फाइनली उसका रूप क्या होगा, वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो बातें सेक्रेटरी रूबियो ने कही क्या उसका कोई झलक उसमें दिखाई देता है, ये हम लोग असेस करेंगे, क्योंकि कहना एक बात है और इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि अमेरिका और इंडिया के संबंध जो है वो नेचुरली इन्फ्लुएंस करेगा बहुत लोगों को, हमारे देश को तो करेगा ही, उनके देश को करेगा और बाकी देशों को भी करेगा, क्योंकि बड़े बड़े देश हैं जो मिलिट्री और इकोनॉमिकली राइज कर रहे हैं। अमेरिका तो है ही मिलिटरली और इकोनॉमिकली सबसे पावरफुल कंट्री, और इंडिया का भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो भार है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो हमारे संबंध है ये इन्फ्लुएंस करेगा, दुनिया को करेगा, रीजन को करेगा और दोनों मुल्कों को करेगा।
1: पिनाक जी, कई बार कोशिश की गई कि व्यवसाय की डील क्रैक की जाए, ट्रेड नेगोशिएशन किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, पर अब तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है। साथ ही साथ मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि रशिया पर लगे जो सैंक्शंस हैं, जितनी भी पाबंद हैं, वो इंडिया की तरफ टारगेट नहीं किए गए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम रशिया के खिलाफ तो हैं लेकिन भारत और रूस के जो संबंध है उनके खिलाफ नहीं है। ये बात कितनी सच है और असल में प्रैक्टिकली कितना ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि इसका असर इंडिया US के रिलेशंस पर पड़ रहा है?
0: इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि सैंक्शंस का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर तो पड़ ही रहा है
1: जी,
0: क्योंकि हम लोग उनके साथ बिजनेस करते हैं, हमारी मिलिट्री रिलेशनशिप है, और फिर तेल खरीदते हैं क्योंकि वो हमको सस्ते में मिल रहा था तेल। तो ये कहना कि ये इंडिया के खिलाफ नहीं है शायद कुछ हद तक सही है, पर बात तो ये है जो भी रशिया के साथ तेल खरीदता तो सबको इफेक्ट किया है, उसमें इंडिया भी है। तो हम तो उस नजरिए से देखेंगे कि हमको क्यों इफेक्ट हो रहा है, आप ऐसी नीतियां क्यों अपना रहे हो जिसमें हमें इफेक्ट हो रहा है। एक स्तर पर आप कहते हो, जैसे रूबियो साहब ने कहा कि हम बहुत बड़े दोस्त हैं, पर दोस्त के खिलाफ इस तरह का एक्शन मतलब डायरेक्टली ना ले पर इनडायरेक्टली तो फर्क पड़ रहा है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही काम होना चाहिए। ये सैंक्शंस वगैरह जो है ये टेम्पररी है, कभी कभी वो उठा देते हैं फिर कहते हैं नहीं हम फिर लगा देंगे, तो इस तरह की चीजों में काफी दिक्कत हो जाती है, सप्लाई चेन्स जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए सैंक्शंस की नीति से हम लोग खुश नहीं हो सकते और कभी भी खुश नहीं हो।
1: पिनाक जी, आपने एक बेहद जरूरी शब्द कहा, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को आज की इस दुनिया में हर देश या हर उभरता हुआ देश या हर विकसित

0: देश कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है। वो चाहता है कि सप्लाई चेन उनके लिए लाभकारी हो। क्या लगता है कि जितनी भी ट्रेड नेगोशिएशंस हैं अब या अब के बाद या इस विश्व की जो परिस्थिति है उसके बाद, इस बात पर निर्भर करेंगी कि सप्लाई चेन जिन देशों के बीच में जो अग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनको कितना लाभ देती हैं, और अब हम म्यूचुअल या मल्टीलैटरल अग्रीमेंट से आगे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल अग्रीमेंट्स के विश्व की तरफ जा रहे हैं?
1: देखिए, वो तो मल्टीलैटरल WTO जो एग्रीमेंट्स थे वो तो ट्रंप साहब ने अपनी नीतियों के धक्के से उसको तो उन्होंने खत्म ही कर दिया है ऑलमोस्ट। पर जो उसको मानते हैं उसके साथ तो चल रहा है, पर अब सब लोग बायलैटरल की तरफ झुक रहे हैं
0: जी।
1: क्योंकि जो सबसे बड़ा इकोनॉमी दुनिया में है वो अगर कहता है कि हम नहीं मानते हैं मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, वो एक तरफा उन्होंने वो डिसीजन लिया है। इसीलिए भारत भी EU के साथ बायलैटरल कर चुका है, उसके बाद नॉर्डिक स्टेट्स जो है उनके साथ भी करेंगे, सबके साथ ही अब करना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमी चलाने के लिए ट्रेड बहुत जरूरी है और उससे सप्लाई चेन्स बहुत जरूरी है। तो सप्लाई चेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसके लिए भी नीतियां बदलनी पड़ती है और इंडिया बदल रही है नीति, क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई चेन्स के जो कई हब्स है वो अब यहाँ बनने लगे हैं। तो इसलिए हमें भी अपनी जो इंटरेस्ट है वो देखना है, पर बायलैटरल हो जाए तो ठीक है, वो तो होना ही पड़ेगा क्योंकि अब जब मल्टीलैटरल आप मानने को तैयार नहीं है तो अमेरिका के साथ तो बातचीत कर ही रहे हैं हम, तो मल्टीलैटरल जो बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो जब हो जाता है तो तब फिर मामला फिर बैक टू नॉर्मल हो सकता है। पर नॉर्मल नॉट इन द सेंस कि जो दुनिया पहले थी जहां मल्टीलैटरल एग्रीमेंट सब मानते थे, पर वो दुनिया नहीं रहेगी, अब बायलैटरल एग्रीमेंट्स की दुनिया में हम पहुंच गए।
0: तो पिनाक साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब हो, जब मध्यस्थता ना हो पाए, तो किन मुद्दों पर बातचीत करती हैं सरकारें? आपके तजुर्बे से आप क्या बता सकते हैं श्रोताओं को कि वो कौन से नेगोशिएशन पॉइंट्स होते हैं जिन पर अंत में ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि चलिए हम अब इन पॉइंट्स पर एक दूसरे से सहमति जताते हैं और अब आगे चलकर हम इस तरीके से अपनी पार्टनरशिप को और बढ़ाना चाहेंगे?
1: ट्रेड का जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि वहां पे एग्रीमेंट्स काफी हो जाती हैं कि अच्छा इस आइटम पर हम ये करेंगे, उस आइटम पर इतना ड्यूटी लगाएंगे, पर कुछ आइटम हमेशा बच जाती है क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं। अब हमारी तरफ से जो इंटरेस्ट है उस आइटम को हम चाहते हैं कि कम ड्यूटी लगे, और वो अपनी तरफ से बोलेंगे कि नहीं इस पे आप जीरो ड्यूटी कर दें। देखिए, अमरीका ने जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ये नीति अपनाई है कि जिन देशों के साथ हमारा एडवर्स ट्रेड इंबैलेंस है, यानी जो लोग हमें ज्यादा बेचते हैं और हम उन्हें कम बेचते हैं
0: जी,
1: उनके साथ हमारा रुख बदलेगा, और उन्होंने बदला भी चाइना के साथ हमारे साथ, क्योंकि हमारे लिए ट्रेड बैलेंस जो है वो हमारे फेवर में है, वो 40-45 बिलियन डॉलर है। अब अमेरिका की ये नीति के बजाय अब वो ज्यादा हमको बेचना चाहते हैं क्योंकि कहते हैं कि आप हमें ज्यादा बेचते हो पर हम नहीं बेच पाते हैं क्योंकि आपके टैरिफ ज्यादा है, और हमारी तरफ से हमने बोला ठीक है आप ट्रेड एग्रीमेंट अगर कर लेते हैं तो बात हो जाएगी, तो हम लोग भी थोड़ा कम कर देंगे टैरिफ आपके अच्छे जो गुड्स हैं उन पर। फिर एक और बात थी कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो हमने मना कर दिया है कि वो हम नहीं खोलेंगे डेयरी एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि करोड़ों लोग इस पे निर्भर हैं और वो गरीबी की रेखा से ऊपर ही हैं पर कुछ गरीबी रेखा से नीचे भी हैं, तो इसलिए उनका जो जीवन है हम नष्ट नहीं करना चाहते, तो इस पे तो हम अटल रहेंगे मुझे लगता है, पर बाकी जितने भी चीज है उनको दूसरी जगह कंसेशंस दे देंगे। तो इस तरह से बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, तो बैठ के कई हो जाता है फिर कुछ बाकी रह जाता है, तो फिर बाकी चीजों पे जाके चर्चा होती है अंदरूनी भी, फिर बैठकर भी दूसरे समूह के साथ जो बैठते हैं उसके बीच सब चर्चा होती है और तब जाके डिसीजन निकलता है, फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज ही होता है, पर एक कॉम्प्रोमाइज म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है।
0: बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और इसी बीच जो ये एक बदलता विश्व प्रारूप हमारे सामने है और किस तरीके से पश्चिमी एशिया में जो संघर्ष चलता ही जा रहा है, अभी फिलहाल उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, आपको क्या लगता है भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए, भारत चीन रिश्ते कितने अहम हो जाते हैं? भारत ने अब चीन के साथ व्यवसाय दोबारा धीरे धीरे धीमे धीमे ही सही ग्रेजुअली ही सही दोबारा शुरू किया है। चीन और रूस के रिश्ते हम सभी जानते हैं कि बेहद मजबूत हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत और अमरीका साथ नहीं है, वैसे ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे भारत और चीन भी साथ नहीं है, लेकिन भारत और चीन ज्योग्राफिकली बेहद करीब हैं और हम जानते हैं कि इससे पहले आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते कितना ये तय करेंगे कि भारत अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत रहते हैं?
1: ट्रायंगल जो

0: हम बनाते हैं कि चीन, भारत और अमेरिका
1: जी,
0: इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो मतलब इंटरेस्ट्स हैं वो अलग अलग हैं
1: जी,
0: और इसीलिए चीन के साथ भी हमारे इंटरेस्ट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चीन भी बहुत बड़ा इकोनॉमी बन चुका है और सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल,
0: वो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए हैं, उनके यहाँ ऐसी चीजें हैं जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं, वो 90% कंट्रोल करते हैं, तो ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप भी वहां पहुंचे थे बीजिंग उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर को भी फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए दबाव तो वो ट्रेड भी यूज करते हैं लोग दबाव बनाने के लिए, कि अगर आपके पास एक मोनोपोली हो किसी आइटम का, तब दूसरों को जब लेवरेज करते हैं तो आप फायदा देखते हैं अपने देश के लिए। चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड भी बहुत बड़ा है और हमारा जो ट्रेड है वो एडवर्स बैलेंस है हमारा, हम उतना नहीं एक्सपोर्ट कर पाते। और आप आज बाजार में देख लीजिए चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स हैं, गुड्स हैं, कितने भरे हुए हैं। चाइना हमारे यहाँ मोबाइल बनाते हैं, कई चीजें हैं जो उसपे होता है, इसलिए चाइना को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग बड़े इंटरडिपेंडेंट हैं, पूरी दुनिया ही आज इंटरडिपेंडेंट है। इसीलिए नेचुरली ये नेगोशिएशंस करके, और इंडिया ने भी देखा कि अगर अमेरिका इस तरह से हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाता है तो हमें फिर दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, हमें दूसरों के साथ भी हमें ट्रेड की जो चिंता है उसको कैसे बढ़ाया जाए वो सोचना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में चाइना काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कई चीजों में तो वो अमेरिका से भी आगे चला गया, तो इसलिए हमें ये रियलिस्टिक पोजीशन तो लेना ही पड़ेगा। और चाइना के पास इन्वेस्टमेंट्स है, वो तो चाहते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
1: बिल्कुल मीनाक्षी साहब, भारतीय मूल के जो लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, टैक्स भरते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी जो अमेरिका के ग्रोथ रेट में बहुत अहम योगदान देती है, उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
0: देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को ओवरऑल कर रहे हैं। अब जैसे सेक्रेटरी रूबियो ने कहा दिल्ली में अपने स्पीच में कि जो नया इमिग्रेशन पॉलिसी हम कर रहे हैं शायद उससे भारतीयों को ज्यादा फायदा मिले, तो देखते हैं कि उनकी नई इमिग्रेशन पॉलिसी क्या बनेगी और उसमें फाइनली क्या होगा इस तरह की चीजों को सॉर्ट आउट करने।
1: पिनाक जी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।

चित्रलोक कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मीट ब्रॉस और अरिजीत सिंह की आवाजों में वन नाइट स्टैंड फिल्म के गाने से। यह है फिल्म का नाम वन नाइट स्टैंड। संगीत तैयार किया है मीट ब्रॉस ने, बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण का गाया गीत फिल्म है साया। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है MM करीम ने।

0: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम में।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए सैयद कादरी का लिखा गीत, प्रीतम का संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज है के की।

खामोशी द म्यूजिकल। लीजिए इस फिल्म में सुनिए कविता कृष्णमूर्ति को, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने।

अभी आपने कविता कृष्णमूर्ति को खामोशी द म्यूजिकल में सुना। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश आजा नचले फिल्म से है। आवाज दे रहे हैं राहत फतेह अली खां, संगीत तैयार किया है सलीम सुलेमान ने और बोल हैं जयदीप सैनी के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी

0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
4: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
5: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
4: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
6: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
7: Several key agreements were signed.
8: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
7: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
9: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
5: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
10: लाइक मेट्रिक टन्स ऑफ इंपोर्ट्स हैव रीच्ड आवर शोर्स।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्वभर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमरीका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित

0: समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
1: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में

0: कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगिल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आरजू फिल्म के गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

दूसरा आदमी, अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया और जयदेव का संगीतबद्ध किया तुम्हारे लिए फिल्म का गीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ।

0: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अभी आपने गुलाम अली को फिल्म निकाह में सुना। हसरत मोहानी ने इस गीत को लिखा था और संगीत तैयार किया था रवि ने।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: बेचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे थे संतोष आनंद ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।
1: हाँ।

की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने दिए।

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के हुस्न लाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे।

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में निकल

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को 4 फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका नहीं।

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था

0: संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

कब तक रहोगे दूर कि दिल की वादियों से आ रही है पुकार, हवाओं के संग संग चल रही हैं फिजाएं भी, लगा रही है गुहार।

लेकर के हाथों में हाथ जो चल पड़े हैं हम मोहब्बत की राहों में। सपने वो हसीन लाखों सपने अब आ गए हैं निगाहों में।

अब इतना भी न तरसाओ कि तुम्हारे नाजो अंदाज की तुम्हें कसम है। खोल दो राज और बोल दो जुबां से कि हम ही तुम्हारे सनम है।

रात ये हो जाए खूबसूरत और ये मुलाकात बन जाए मोहब्बत, आती है तो आ जाए मौत बेशक कि अब हम ही है तेरे दिल की जरूरत।

0: समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल